महा कोरते बां पकर गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला

नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मुह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार दाखरो संजम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर सतमा।

प्रभ आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली हदूर चुका नहीं हो रहा सकी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रे सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा बार सूत सगल

आवत है बहुत सिहाला, सगल चरण की इहु मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बार एक दिखाया। आशा मैला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक कै माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभु कृपा से मन वस आया, नानक गुरु तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

सगल सुख जा तू चित आवे। सो नाम जपे जो जन तुद पावे, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुकम गूंजे सोई परवान, साथ सब ज्ञाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा मैला पन्नवा, जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई।

के सूत पर होई कट कट अंतर रया सोई ओ पट पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलती आ नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई बुद्ध। आसा महला पंजवा मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे साध सेवा अग कटे कनेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिनस्यो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहु नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सत गुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा चूठा मो मिथ्या पसारे रहाओ गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप। आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे कुए कै ओही कट कट अंतर

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभु तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दे।

भोजन इत उत कटे न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कह संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पन्नवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे तू मेरा कर्ता हूँ सेवक तेरा शरण गई प्रभु गुनी गहेरा रहाओ तू मेरा जीवन तू आधार तुझे पेक बिद सह कोलार तू मेरी गत पथ तू परवान तू समरथ मैं तेरा तान अनदिन जपो नाम गुण तास नानक की प्रभु पै अरदास आसा मेला पन्नवा रोवन हारे झूठ कमाना हस हस सोग करत बेगाना को मुआ का कह कर गावन को रोवे को हस हस पावन रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना पहुँचना मुका फिर पछताना त्रयो गुण में वर्त संसारा नरक सुरग फिर अवतारा कहो नानक जो लाया नाम सफल जन्म का।

निसारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाई प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आसा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कम कर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आसा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जाके गृह सब किच है पूर्ण सो पेटिया निरपैतनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तरी अगम गुसाई।

नानक नाही तिन कामी। आसा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरै सारंग।

उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विद्फाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

को तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आ

उपत हुए के राज समाया कर कर अनर्थ विहाजी माया संचत संचत फैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को दीनी काच गगरिया अंब मजरिया।

समाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन बन जो है, मन कन लागे होए के मीठी, गुर प्रसाद में खोटी दी थी, अगरक उसके वडे ठगा।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किछ करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे ना चूरी है, नानक दर्श क्यों।

पुरख विराते है बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक।

कई मोत रंग माने फिर बौर बौर पछतावे अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

ओ कुटुंब बिखै रसमा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन लाल।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओह सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई, ओह अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुर ते पाया, नानक एहो हर का चोला, आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ हुए सका।

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो

जाए, प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे, लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया, जिहे कारज रहे ओला सोए कामना करया, ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहा सोचित कर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जा गया हां, नानक बड़ पा गया मैं।

अपे करता करे सो होवे, गुरहिव शीतल अग्न बुझावे, सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुण।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार, अटल

गुरबोहित सबद पै सरना निरपौ आप निरंतर जोत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

पांच अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण तोवे।

रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लग लोभ अहंकार सुपीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन

संचय तन जाए, बिन हर भगत न कविताए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर, महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

तीन गल सिलका पाया टुटन मोक्षरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे।

कहां सो कारदार मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान संगोली हर

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुराणी इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो।

ना होई जे चलदा ले चलिया किछ संपे नाले ता तन संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछो तावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसा।

सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुरु बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी क्या पवे दिसंतर, गुर का शब्द ना ची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना, अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी वन में तप करे नित तीर्थ वासा, आप न चीने तामसी काहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावे, बिन गुर शब्द न छूट ही प्रम आवे जावे। एक गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम से आई है मन मंदिर पी जय रहा हो कूड़ा लाल छोड़िए तो साच पछाने गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिये हर्ष बन आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी गई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूटी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है, गुर की कार कमाए महल पछाणी है, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जम्मन मरना आखी है तिन कर तय किया आप गवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुरकी फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

पाई कृपा ते सुख पाया साके पर थाई गुर बिन किने न पायो केती कह कहाए अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

वडियाए गुर की सेवा सो करे जिस पाप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाग सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया ओ

साहिब स्यों मन मानिया दे साच आधार, एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई, ताको बिघन न लागई चाले हुकम रजाई। हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने, खोटे खबर न पाए नी रले जूठाने, नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए, खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई, अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया, जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब चेहरा क्या को करे प्राणे। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने। नाम तेरा सब

कर कृपा नाम मनवसाए, इहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुरु सेव सदा।

सदा सच प्यार, हर जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए हो मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे।

आप वाली द्वितीयन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर पंडा।

जान सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई कर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भय जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम है।

नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे समाए आसा मैला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जो रते सिफती सत समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर जिनकी तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाजे।

मेल लै एक दरगे मार कडे कूड़ियार, एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते।

सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए। गुरते कीमत पाई है सच शब्द।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक सत्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए रहाओ। मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे। जिना पिर का स्वाद न आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे। गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना फेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

दिखाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिस कै लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुखते कह न जाए साची प्रीत ना टूटे प्यारे जुग जुग रही समाए जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए नानक रंग रते नारा।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न पाया सेवा।

या पंडित आप थिया छच्छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जज्जे जान मंगत जन जाचे

टट्टे तंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा से ही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खा दे तेरा जन्म गया। मम्मे मत हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया। अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया। कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया। पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाये, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछा।

मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम, अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम, अवगुण पर हर करनी सारी दर्श चै प्यारो, आवन जावन ठाक रहा है गुरुमुख तत् विचारो, साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई, सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

कर्म विधाता दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निद पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे, एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम छुपाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली हर वर न पाए राम, कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर

आवे। भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला

गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी हम दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन सियाणप छोड़िए

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मनमुख मूर।

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। महा बिखम जम पंख दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरु।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरुमुख हर पढ़िए, गुरुमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख।

लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आमन जान जियो।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लग

कौन उपाय जियो। कल युग हर किया पग त्रैठ किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

जग भर न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पे दे जान जियो हर दरगे पे दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

मंत्र दृढ़ाए, हर रस रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया, मुआ जीवाया, फिर बाहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद।

आगा समेला तन्यमा छंत कर पहला अनदो अनद घना मैं सो प्रभ दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृह वस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो।

मैं सब कुछ पाया नाम से आई राम, नाम से आई सदा सखाई सहज सुभाई गोविंदा, गलत मिटाई चूकी ताई कभी न व्याप है मन चिंदा। गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रिज शोभ बनाई, कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई। सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम, गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा, पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा। सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता, कहो नानक जहाँ वल स्वामी ता सर से पाई मीता। आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम, सुर नर मुन जन सहज वखानी राम, सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया, जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया। तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी, बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी। हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम, वड़ पागी सत्संगत पाई राम, वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे, गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मिटाया पै। कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई, बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई। हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता, कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरुष विदाता। गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे, बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड़ पागी पावा राम, हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभ भावा। आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे, मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे, हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे, गुण निध गाया सब दुख मिटाया हो मैं बिनसी गाथे। प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा, हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा। ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते।

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओर्थो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की

पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मनोरथो पूरा। आशा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात। संत जल दूध में आई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पी है। जह दुख सुनिए जम पंथ पणिए तह साध संग न डरपी है। कर कीरत गोविंद गुणिए सगल प्राचत दुख हरे। कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय इहो मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए। कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशी के हम पाहुणिया। अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है। कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय। मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी तां डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे। कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन बसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनेक पाप गुपत प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात। नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए सांग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी। अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा।
वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरनी ऐसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद नह अलसाई है पेट साधु संग जमपुर नह जाइए दुख दर्द न कहो व्याप नाम सिमरत सत सुखी सास सास आराध हर हर त्याय सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयम पै चरण जम पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत हरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अरादे तय तय प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा मैला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सत सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह सुभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जम काल नानक मन तन सुखी हुए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम देहो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहे होते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय कौन नाम तारीख उधारे पगत संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे वसुध कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया वही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा
पुरख पते भगवान ताकी शरण गही, निरपो पय प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया, जय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आवन सब रहे, अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहा, पट पट वासी आप विरले किने लया, जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया, आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा, जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग पीत कलमल पातरे, दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया, मिल

दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे। आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक करी कर कृपा भगवंत। चंत पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही इखनो। तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चार मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया। मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुण गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिन हंस नानक रंग राती प्रेम सहज समाने। सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे। सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा कारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिन हंस नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे। आशा मैला पंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया। कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया। माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैन।

नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत मिटाया। काथो हो मिर्ग जिवें पेख रैन चंद्रायण सुखो दुख पए नित पाप कमायण। पापा कमाने छड़े नाही ले चले कत गलाविया हर चंगोरी देख मूठा कूड से जा राविया। लब लोभ अंकार माता गर्भ पया समायण नानक मिर्ग अज्ञान बिन से नह मिटे आवन जायण। मिठे मखमुआ क्यों ले उडारी हस्ती गर्त पया क्यों सरिये तारी। तन दुहेला पया खिन में खसम चितना आयो दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो। गुज्जा कमाना प्रगट हुआ ईस उते फुहारी नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभु की चरणी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत पर आया। राख लिए रखन हार है सदा निर्मल करनी नानक नरक न जाए कभू हर संत हर की शरणी। आसा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती रावो सहु आपनड़ा प्रभ संग सोहंती। संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सुरैणी रावी है सास सास सितार जीवा प्रभ पेश हर गुण गावी है। बिरहाल जाया

दूते दैन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज जीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई मैं अंत जाई पाया, बिनवंत नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत पह पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनग्रो राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिनवंत नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निज सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी।

साथ है, संग देखे करणहारा काए पाप कमाइए, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते, वल वंश कर उदर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पद न संगे कुल समूह तारी है, शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजिए प्रभ एक करने हारा, खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा, संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया, जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा, पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही, हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए, मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक वद पाग पाइए।

प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सत ताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमह।

सुंदरतम ज्ञान सुंदरतम ज्ञान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

जूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबुआर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह ना सत्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे कर्म बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाओ न पायन कूड़िया मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में कर्म बहा लिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पहुंच

सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पाउन पानी बैसंतर कुदरत करती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नारी पाक नार कुक में अंदर वेख है वर्ते ताको ताक पौड़ी आती ने पोट पोट कह हो पसमर पौर सिदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कब चलाया अग्गै करनी कीर्त वाची है बहले खा कर समझाया थाउ ना होवी पाऊ दई हुन सुनिए क्या रू आया मन अंदे जन्म गवाया श्लोक महला पहला पैर च पाउन वह सदवाओ पैर चलने लख दरियाओ पैर छगन कटै वेगार पैर तरती दबी पार पैर इंद फिरै सिर पार पैर राजा तरम द्वार पैर सूरज पैर चंद को करोड़ी चलतनांत पैविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैविच आदाने आकाश पैविच जोध महाबल सूर पैविच आवे जावे पूर सगे आपो लिखिया सब लेख नानक निर्भव निरंकार सचेत महला पहला नानक

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार गावे राजे राणिया बोले आल पताल लख क्या के मुंडड़े लख क्या के हार जित तन पाइये नाम का सेतन होवे चार ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करें जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया एओ जियो बहुते जन्म क्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सच्चो सच बुझाया श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली तरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नाक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपव निरंकार सच नाम जा का किया सगल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ किन्नी रैन जिना मन चाहो सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत लाटू माधानी आन गा पंखी पौधिया लैन न पा सूए चार पुआई जंत नाम पौधिया गंत नांत बंधन बंद पुआए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ना जाई सिद्ध न होए नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आग गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर कुनहु नीच सदाइए जे जरवाना पर हर है जर वेश करें दी आइए को रह न परिये पाइए श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ फरियत पढ़ पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनत्या उनजे ते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपदे देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार इक होदा खाए चले एथाउ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोआ आकारा आकार कोई जी आखे सोटू है जाने तिना बे तेरी सार नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ तो अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया जग जीवन दा का पाया श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान विहूणा कर सतलूझे नानक हुक्मी लिखिए लेत जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा हौ मैं एहा जात है हौ मैं

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्फ बर्फ, परी है जेते मास, परी है जेती आरजा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिण नावे किस खाई न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैते आए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कप्पड़ कूड़।

द्वार सच का पर जानिए जा जुगत जाने जियो तर्क काया साध के विच दे करता बियो सत्ता पर जानिए जा सिख सकी ले गया जाने जी की किछ कुन दान करे।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवा आत्मा

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अतै उमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिम्मल रुख सरायरा अप दीर्घ अतमुच ओज आवे आस पर जाहि निरासे कित फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सबको निवे आपको पर कौ निवे न कोए ताता राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जान हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुख टूट बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे। पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तब कपाह कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने है पथूप जै साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महिला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वै निदारी तग ना तैरी तग ना अखी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान। पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे

कर लावो गोबर तर न जाई। तोती टिक्का तै जपमाली तान मलेच्छा खाई। अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहे तरंगा महला पहला। मानस खाने करे निवाज चुरी वगाने तिन गलताज।

दूर नान कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का पेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई।

वाला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परतय परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना।

अंतर देव का लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाप पवित पापी सो संग दया चुका पिया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक ए वह जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला पन जमिए पन निमिए पन मंगन भी आहो पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पावरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार।

के पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल अखर तीरथ जे नाम है उतरे ना ही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल।

पौड़ी जिथे वे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल न हारिए।

कियो। गुरचरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जग उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लावो, जित कह बंधन टूटे, जन्म मरण दुख फेर कर्म, सुख जी जन्म ते छूटे राव। माया फास बंद नहीं फारे, अरे मन सुन ना लूके, आता पद निर्माण ना चीनिया, इन विद अभ्यो न चूके। कही न उपजे उपजी जाने, पाव अपाव बिहूना, उदय अस्त की मन बुध नासी, तो सदा सहज लिव लीना। ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा, तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया, तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। कैसे संत ना मौके पावे, डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलिया की हो बहन पान जी जिन्हें बरी तिस्केरी हमरो परता बड़ो विवेकी आपे संत कहावे ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे नाको काटी कानो काटी काट तू।

लुंजत मुंजत मौन जपा कर अंक कऊ मरना तांसे सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तौ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो रामे जम्पो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तक

आई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, तिन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े है, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहा, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरख की जोई, अट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कहताई, इस बंदे से जुल्म होत है।

ていくとけ、सम सन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तकना जाए रहाओ, तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सब संजोई, हर का बिलोवना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

ने कूटा मंदल ना बाजे नट पे सूता बुझ गई अगर ना निकसो तुआ रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ टूटी पंख न बजेर बाब फूल बिगारे अपना।

का सार हो गनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना की।

फायर सोख पुजंग बलयो रहाओ सूके सर्वर पाल बंधावे है लूने खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी रासत मुगद फिरे चरण शीस पर कंपन लागे नैनी नीर असार है जेवा बचन शुद्ध नहीं निकस तबरे कर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चल दिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए।

खान करारा और ख्वाद न की जय रे मन, सुकृत कर कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताल, काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जमकर दंड मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाच तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे, रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे।

अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे तब तो दीन पछाने खसम पछान तरस कर जी में मार मणि कर फीकी आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे।

हाकी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल खाता। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने प्रमते। खाका मन कुंचर उर खाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पय दस बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी।

यानवासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा

अगन कुंड रहाया। दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया। राव बारिश

गिर्द पाया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े तब है काहे रोया। जीवने की आस तर है जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हूँ, पांचों तत्व बराती, राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती। गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहो। नाभि कमल में बेदी रचने ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया असबद पाव हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोह ब्याय चले है पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं देखो, ये दुख कासो कहो रे रहाओ। बाप सावका करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े भाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हूँ न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुजो मोर गियाना तुम तो जाचे कूपत राज।

आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही कछ गौरे जो दिल में खबर न होई। अल्लाह गैब सगल कट पीतर।

सदगुरु बचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी, सहरते ही है बुरी, अब की स्वरूप।

तहता सी मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, सत ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना, लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक।

आशा। मन मेरो गजी जुहबा मेरी काटी, मत मत काटो जम की फांसी, कहां करो जाती कह करो पाती, राम को नाम।

आठ पहर अपना खसम के आवो। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंठ से डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध ना ही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा के ना भाव सी। रामा भगतें

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस। मा दो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल सास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन।

रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख के ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुफेद सपैयल,

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत ना तेरो जन प्रेम की देवरी बांधियो तेरो जन कह रविदास सूत वो कमन गुन आशा। हर हर हर हर हर हर हरे हर सुमृत जन जय निस्तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम दियो दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहाओ जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भय। ज्योत समाये समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम।

जी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया

हासा। बोले शेख फरीद प्यारे अने लगे इवतन होसी खास निमाणी गौर करे। आज मिलावा शेख फरीद काकिन कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया रहाओ। जे जाना मर जाइए तुम ना आइए ऊंची दुनिया लग ना आप वंजाइए।

के नाम ती आई है, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तो वह कोई, झूठ लह जियो मांझिए मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आई।

निसारे संभाले जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार ताको अंत ना जाई लखना

रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मले मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दोह लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेर, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगै जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई, जे लोचे सब कोई। पूरे की पाल विच्चों निकले का सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुनरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चलदिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमा।

दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

अंत गया पछताए। क्यों मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अस्त तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुकम बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा छे। दूजे पाए जेता पहे पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आपना पछाने सच ना करे प्यार सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए नानक जो तिस

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहा। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले कृपा से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है।

खाए मुख गो है अमृत सारे सतगुर सतवादी जितना तय कौआ हंस हो है नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है गुजरी महला चौथा हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर पुकारे जो जन सुने सरदा भगत।

तुम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे, हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत पग पंडारे। जिन दर्शन सतगुर सतपुर

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगिन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थूक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव दिहाई, तन तन सहवास।

आप कृपाल कृपा प्रवतारे हर आपते गुरमुख मिले मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया। मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ। वड पागी हर नाम से आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाओ। नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम है हर सोचित लावे। अमृत बचन सतगुरु की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बन आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें।

तू पाए कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सो दे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अच्छा मज्जन कर स्नाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो मन के हर हरे, साध संगत में पाया। माई काट आयो कर पूता, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता रहा। हर तन स्नान हर तन ज्ञान, हर संग लाए त्याना। हर तन तुल्हा हर तन देड़ी, हर हर तार पर

देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास होए अनन मन हठ की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात सहज सुभाए भय फिर पाला इस जन की काटी फास कहो नानक गुरु।

ते काम क्रोध माया दुख ममता ए ब्याज के हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो राव जो कुछ कियो सोई पल माने ऐसी पगत कमानी मित्र सत्रे सब एक समाने जोग जुगत निशान।

दुख परया, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंग सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण न बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बस अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक क्यों।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदव सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति औ

नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुनावे जाई हर जप माया बंधन टूटे। अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही, बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ, साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहे है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहा तहा हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजे टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हठीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह के संगे एक मोयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरते मन होत आनंदा

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहु नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी महला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिनका बल है थोड़ा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नान

चुत चुत वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपे नानक।

कपटे अनेक जुगत कर कायो, विसरत प्रभु के दुख गनिये महामोनि खायो। करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो, गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो। गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत।

पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रुद्र तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रमते पुकारे कत नाई छोट हर चरण शरण अपार।

उस दिन अवर ना खाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपिन तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ

मोख मुकत सो पाए, चेतो बास दियो मनवाली, राम हृदय जप माली राव, उर्द मूल जिस साख तलाहा, चार वेद जित लागे, सहज पाए जाए ते नानक, पार ब्रह्म लिव जागे, पार जाते कर आंगन मेरे, पोप पक पट डाला, सर्व ज्योत निरंजन शंभू, छोड़ो बोत जंजाला, सुन सुखवंते नाम

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद ता।

बिस्तज अमृत पियाया गुजरी मैला पहला। कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार। जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार। ऐ जी जब तप संयम सच आधार। हर हर नाम दी।

ना तद माया मगर न छाया, ना सूरज चंद ना जोत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पाणी अगन तिनकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश अकार, सर्वे जाचक तू प्रभदाता, दात करे अपने विचार, कोट के तिस जाचे प्रभ नायक, देंदे तोट नाही पंडार, ऊंदे पांडे कछ ना समावे, सीधे अमृत परे निहार, सिद्ध समाधि अंतर।

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताएं बिन हर पग

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वास हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा। हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे सहज हरी, बिन हर नाम बिरथा जग जीवन, हर बिन नेफल नेत करी। है जी खोटे थोर नाही कर बाहर।

निंदक नर काली मुख निंदा जिन गुर की दात न पाई। सहजी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अद्वार आई। अनदे मूले नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मिलाई। सहजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस केट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सर।

ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਤਉ ਸਰਣੀ, ਲਭ ਲੋਭ

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत बिचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए जिनको कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरे सा वेला बिरखा जाए साए साए।

गुजरी महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह न सके जो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी। मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहा। सनक सनंदन नारद मुन सेवे अंदिन जप

एका जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनकेरा आप सरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस दायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मेला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध।

दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

विदार मानते उधर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चित लाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पावे।

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैं गल हो रहा निक्षा क्यों कर जाए।

मुक्त द्वारा अतनी का नाना होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाईए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हौ मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यों चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे हा जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपिया जे जी।

पाई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चलदियां नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जी रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटिया आए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोय सुख न पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन, ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी।

सुख विचों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाहिए हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय सदा सुख।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार। सहजे नाम ना त्याया, कित आया संसार। फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर। कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार। नानक गुरमुख उबरे, जे आप मेले करतार पौड़ी। भगत सच्चे दर सोंदे, सच्चे शब्द रहाए। हर की प्रीत तिन उपजी, हर प्रेम कसाए। हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए। सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए। बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान, पगती खटिया हर उत्तम पद पाया। सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया। विचे ग्रहे गुर बचन उदासी, हो मैं मोह जलाया। आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया। ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया। जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नामो दै खुआया। जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया। छादन भोजन ना लेही, सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अंकारा। ए जम की सिरकार है, एना ऊपर जम का दंड करारा। मन मुख जम मग पाईन, जिन दूजा पाओ प्यारा। जम पुर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले।

जहाँ गुर मिले अस्थिर रहे समाये। नानक मन ही ते मन मानिया ना किछ मरे न जाए पौड़ी। काया कोट अपार है मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहा आपे रस भोगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे सो होगी। हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाए दा।

आई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई वाहो वाहो करे सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम फूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहार है जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना होवई ना ओए दुख सहाए, नानक गुरुमुख उबरे।

तार, टाडी दर कर पाए सी सच रखे उर तार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाया दर

जिसनो आपे बख्शे करतार महला तीजा सदा सदा साला ही है सच्चे को बल जाओ नानक एक छोर दूजे लगे साजेवा जल जाओ पौड़ी अंसा।

तैया तिथे सोग विजोग ना व्यापे अस्थिर जगतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी किस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरिया तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

सात जना कै संग पव जल तारयन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारयन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी, अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वज, नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याइन बेद कते बां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याइन इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए, कूड़ो करे विनाश।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन प्रसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना स्वाओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दूख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी।

दास करगत होए मेरिया। तेरे हाथ निधान पावे तिस दे, जिसनो होए दयाल हर नाम से ले। अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है, जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछियां फिरन सुआव ना जान सुनिया, से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़, तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई पौड़ी। आराध्यो सच्चा सोए सब किछ जिस पास, दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास। त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो, पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो। कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए, जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए। जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया, पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी, इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै, गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप, जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप, नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप, आपे लयन छाए बंधन सगल काप। तिसन बुझी आस कुन्नी मन संतोख त्राप, वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न कुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागियो जल थल मैयल सोए, नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए, पगता तेरी टेक रते सच नाए। जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए, पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए। दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए। सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथिए साई सुहावी रुत, कड़ी मोहत ने विसरे नानक रविए नित पौड़ी। सूर वीर वरियाम किने न होड़िए, फौज पानी हाठ पंचा जोड़िए। दस नारी औ दूत देन चमोड़िए, जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए। त्रै गुण इन कै वस किने न मोड़िए, परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए। गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़िए, हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजे नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी हो वै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया, सो सतगुर वाह वाह जिन हरस्यों जोड़िया। नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ। पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया। महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आया चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो

कार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो भगता मन उठा सच समारा तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही न होए कट्टे कट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे पाए मनोरथ सब जोनी न पवे सब किछ करते हथ कारण जो करे नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते प्रभ दास का दुख ना खब सके हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा। राम

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते जो सुंजे कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा परम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई।

मले ना लाछे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाशे पंखियलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाशे कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिख अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदे बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर्प

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी, हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप्त न पाया। काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काय फिराही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सर्प जोन वल वल अवतरे, अरि बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। बेसवा जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सूकर जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। प्रेत जोन वल वल।

सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस हमरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

पहला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख पाग सुभागे।

लतरी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एक ओ प्रियो सखियां सब तरह की जो पावे तुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू ले राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ हो फिरो दीवानी आवल बावल। किस कारण हर टोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है गुरु प्रसाद।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही पूर्यारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ। जिनका हृदय नाहि हर स्वामी तिन बिगड़ रूप बिनरखती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाये प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याये रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाये। काट अब घट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाइए। पुस्तक करें सेवक मुन के ते तेरा अंत ना कतहू पाइए। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइए। देव गंधारी माई होन हार सो होई है राज रहो रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोइए रहो। कह फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत मेर ते तजो अभिमाना। शरण स्वामी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो। नाही ना का बोल करत निमुख न बिसरो हिये मोरे ते। बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरे।

अंधेरा संती काटिया जीव दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी तरम तरम किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी छाड़ स्यान तो संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंदारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहो खोजत खोजत खोज बिचारो हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एवं निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा देव नारी महला पंजवा मन कह अहंकार अफारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा तरह कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरे करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित हेरे अंग बिला

लातनिया। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा, सुंदर त्यान तार दिल रहनी, जी प्राण ते प्यारा रहाओ, शास्त्र वेद पुराण अवलोके, सिमरत तत विचारा, दीना नाथ प्राण पत पूरन, पव जल उदरन हारा। आज वाद पगत जन सेवक, ताकी बिखे अधारा, तिन जन की तूर बांशे नित नामक, परमेश्वर देवन हारा। देवगंधारी महला पंजवा, तेरा जन राम रसायन माता, प्रेम रसा निज जाको उपजी, छोड़ न कतहु जाता रहाओ। बैठ तो हर हर सोवत हर हर, हर वस भोजन खाता, अब सब तीरथ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया, जिन कीनो सौत विदाता, सगल समूह ले उदरे नानक, पूरन ब्रह्म पछाता। देवगनारी महला पंजवा, माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है, अनेक प्रकार फिरत बिल्ला से, मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो, बहु जोनी परमाई है, टिकन न पावे बिन सत्संगत, किस आगे जाए रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा, साध चरण चित लाई है, संकट कोर कटे खिन पीतर, नानक हर दर्श समाई है। देवगंधारी महला पंजवा, ठाकुर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, दोए कर जोर करी बेनंती, पार ब्रह्म मन से आया, हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार, कहो नानक जन को बल जाइए, जो सबना करे उधार। इको अंकार सतगुरु प्रसाद, देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुरु पे बिनो कहया, पै कृपाल दयाल दुख पंजन, मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ। हम पापी पाखंडी लोभी, हमरा गुण अवगुण सब सया, कर मस्तक तार साध निवाजे, मोहे दुष्ट जो खया। परोपकारी सर्व सधारी, सफल दर्शन सह जया, कहो नानक निर्गुण को दाता, चरण कमल उर दरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ प्रभ हमारे, शरण आयो राखन हारे रहाओ, सर्व पाप राख मुरारे, आगे पाछे अंतिवारे, जब चितवो तब

तारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराजी जो दिसते सो गाछे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आए पयो नानक गुरचरनी

तुहारे कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो खा नहीं अगहूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाई है मन रूचा खोज असंख्या अनिकित पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंदारी महला पन्नवा।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो ना।

आओ कह पे थारो हों करत तराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा पाकी शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साक्ष संग।

अरे माँ पिता पाई सुत बंदत अर सुन गृह की ना रहा तन के प्राण होत जब न्यारे तेर के प्रेत पुकार आज घरी को नाखे कर के देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देव दंदारी में।

चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख गए हारियो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे।

करिया बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की दत्त नह को जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह ताको विवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सब से रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विछुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हो हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कम

राज विहागड़ा महला चौथा। अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी, अमृत गुरमत पाए राम। हौ में माया दिखे मेरी जिंदगी, हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदगी, हर हर नाम से आए राम। हर साज बड़े लिख पाया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदिया मेरी जिंदगी, जो बालक लग दुध खीरे राम। हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदगी, जो चात्रिक जल बिन तेरे राम। सतगुर से नहीं जाए पाओ मेरी जिंदगी, गुण दसे हर प्रभ तेरे राम। जन नाम घर में लाया मेरी जिंदगी, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदगी, बिख बांधे हो मैं जाले राम। जो पंखी कप

ये गुर सतगुरु वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वड पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंत

अज उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पास गवाते राम। अज उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पाप गवाते राम। पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहु कुंडी चहु जुग जाते राम। हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर शरणाते राम।

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आ रहे राम, पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम।

ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़ी है जो सब तू साहिब वड्डा राम जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ चंदा राम गुर सेविया है गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंदा राम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छड़ा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाने जो जिए कमाई है राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकुराई है राम मन मुकाम

कवन रसना गुण कना त्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नहीं तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

तीसरे हर जियो करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग न पौ गया जिन्नी हर हर त्याया, संत प्रसाद करे पावजल पूरब लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांस आई, मिलिया पुरख अपारी, बिनवंत नानक से।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु के आए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए।

नानक सरन समरथ स्वामी पैज राखो मोरे, जाके ही छड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

सतगुर कै तै पन न करो रह अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए। सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया, जदों आपे साथ किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया। फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख,

कहे कथे न पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करीजे आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्तीजे आपे सुख दुख दिले करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जाए। श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह पैके ते निस्तरे तैर च निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार दिख माया।

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारद तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

सत संग मिलाप होए लिव कटोरी अमृत परी की कथे विकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे

संध्या प्रवान है जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे।

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पाया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे चोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुल्ले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

वाले पौड़ी आपे अस्थर तीर्थ करता आप करे स्नान आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान जिस भी तेज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर पेट।

छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इह लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षों केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारह बनस्पत आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचे आपे ही मुह पाए, आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनों तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परया आया मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए, अपना पराया

ओ सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसेनो सालायो संतो जिन

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे।

तुर खसमे का हुक्म पाया बिन सतगुर चेते आना जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभाल दम न बिरखा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर नाम से आया रहाओ, ब्रह्म वेद वाणी प्रगाती माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर्ते कर अपने तामस बहुत अंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, किस लग करे संसार।

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच

पुरते नाम पाया जाए, सच्चे शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए, रहाओ गुर के शब्द विच्चों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी, जिन हर नाम

का मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहाओ, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सकै कोई, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझ आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसै मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर तरफ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर तरफ

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा फिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए कुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सिसलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आपनड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं

तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले। सो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए। हर जप हर तेती।

रहाओ। लाख भगत जा को आरा दे, लाख कपि सर कपि सा दे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरुष दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को सब

जिने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वढ़ंस महला पंजवा।

महला पंजवा तू वडदाता अंतरजामी सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढांस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ पै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंज

इसमें रहाओ। खुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तन।

तीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

सच तुन सच शब्द विचारा अंजन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विचों बल जाओ दासन दासा हो।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब कोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाये मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाइए, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए, जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए, काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया, सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे नाख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना, जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना, जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया कर्म हुआ तुरख दे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय है आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया, लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुर

नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मुहे चेते नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा वक्त सो

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम दुआर ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी किच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे, श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी, बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिरके रंग रती मोये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे, सोहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदर नाम वखाने कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया हौ मैं मार मुये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती, जा चले सतगुर पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वापार पला, जे सहजे की जय राम, अंदिन नाम वखानी है लाहा हर रस पी जय राम, लाहा हर रस लीजे हर रावी जय, अंदिन नाम वखाने गुण संग्रह अवगुण विकणे, आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई, सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली, गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजे शरीर जमाए राम, अपने कर अंदर रस कुंच तू लाहा ले परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए, बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके, कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चे शब्द सुहाए हर वापार से जन लागे, जिना मस्तक मणि वड पागो राम, गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना, शब्दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे, गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन, हर रावे मस्तक पागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम, गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा, सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारन हारा, पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई, कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई। वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो,
अपने घर तू सुख वसै कोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साकै साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए।

मनमुख सोए रहे अपागे, नानक सहजे सेवे गुर आपना से पूरे वडभागे। वडहंस महला तीजा, रत्न पदार्थ वणजिए, सतगुरु दिया बुझाई राम, लाहा लाभ हर भगत है, गुण में गुणी समाई राम। गुण में गुणी समाए, जिस आप बुझाए, लाहा भगत है सारे, बिन भगती सुख ना होई, दूजे पत खोई।

माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा राम कूर बोल बिख खावणी बहु वधै विकारा राम बहु वधै विकारा सहसा एहो संसारा बिन नावे पत कोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बसे सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछू न जाए वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम बनजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर फूटा अमृत परिया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, बिख का कीड़ा बिख्यों लागा, बिष्टा माय समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा, माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध ना काई राम, गुरुमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा, गुरुमुख होवे सोई बूजे, सच सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले, होर

फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वसा।

माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। एह जगत जलता देख के, पज पे हर शरणाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही, महल पाइन मत परवान।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट सरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

कहो नानक हर आप मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हौं गुर बिन खरी निवाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी गुर सिख नी प्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा सतगुर प्यारा मैं गुरु बिन रह न जाई राम। हर नाम देवे मेरा अंत सखाई राम। हर हर नाम

निफल जन्म किन बिछा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श ना करियो, जिनी हर हर नाम ना प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरुष ना पाया, हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम शात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बात पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे तिन करे बेनंती, गुरु सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समाप्त कर जाने।

मार बिदारे हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते दुख लाके पाप सुन पापा सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो कृपा।

विकंपयंगा अनुत्तरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुणगा।

महामार्ग पंथ बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर नाम गत नित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करते, हर राम नाम बखानिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

आज सबके आया मंगल गाया, चूके मनो आदेशा, सो प्रभ पाया कथे न जाया, सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना, प्रभ हर तन सहजे जीता।

जिन हर हर रसना पनया राम सो सह सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए तह बोहे सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सूची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सब कुरबान। श्लोक देह अंधारी अंध सुंजी नाम विहूणिया नानक सफल जन्म जय सत उठा सच धनी संत तिन खनिए वंजा जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम जन चास अघाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अम्यो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिए वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई।

तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए। आप दुखता आप मुक्ता आप वखाना, नानक परम तह गुण बिना से।

लेख लिखाया लिखेड़ा साहा ना टले जिहड़ा पुरब कमाया बह खाके लिखिया अमृत लिखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाए बहुरंगी गलतागा।

मैं फिर सच पछाणिया होर फूली अवगणिया रे सच रे आप जगत पाया गुरगुन कोर अंधारो आप मिलाए आप।

काले वस जग बांधया किसदा फरू ना कोई जिन जम सीता सो सेवी है गुरमुख दुख न होए नानक गुरु।

जिक्र गुरमुख शब्द ना लाग जाए, सतगुर सेवे नाम मन वसे विचों परम पौ पा गए। जे हा सतगुर नो जाने तेहो होवे, ता सच नाम लिव लागे, नानक नाम मिले।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए गुरमुख जनक हर नाम लिव लाए गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुर हर

बंदप है पाई जे बुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई विचर चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई फिर पछोतावे हर के दास सुहेले भाई

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जख मीठा लागे पाई।

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना विसरे मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरुमुख जागे से उबरे भाई।

राम नाम लिव लाए, नानक नाउ बेड़ा नाउ सुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा हर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, और है सुख नाही, होमे जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन में रोवे ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवे ता सुख पावे, नाहे ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण तात बहु कर्म कमावे, हर रस साधना आया, संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता, से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर।

हर का नाम सच्चा मन वसिया, नामे नाम समाए, बिन सतगुरु सब जग बोराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुला ना रहाओ, त्रैगुण माया परम पुलाया, हौ मैं बंधन कमाए, जमन मरण सिर ऊपर उबो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रैगुण वर्तें सगल संसारा।

गुरमुख प्रगट होए सूरत मैला चौथा। आपे ही सब आप है प्यारा, आपे था पुथापे, आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेख है प्रभ आपे। आपे वंचन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महा रस मीठा, गुर शब्दी चक जापे रहाओ। आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप करे प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे। आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे सदगुरु आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे। आपे नाम जपाइंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे। सूरत महला चौथा। आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुर पूरे मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म वक्दा प्यारा, जल माटी बंद रखाया। आपे ही पौ पाइंदा प्यारा, बन बकरी सिर हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया। आपे ही आप वर्तदा प्यारा, तै अग्न ना सके जलाया, आपे मार जीवाइंदा प्यारा, सह लेंदे सब लवाया। आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारे लाया, जो आप चलाए त्यों चलिए प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया। सूरत महला चौथा। आपे सृष्ट उपायदा प्यारा, कर सूरज चंद चनान, आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुर न आवन जान रहाओ। आपे ही गुण वर्तदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बचतराइंदा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुकम वर्तदा प्यारा, आपे ही फुरमान। आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान, आपे सेव कराइंदा प्यारा, आप दिवावे।

आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, सब संगत पुरुष तुम्हारे, पुरुष है पुरुष मिलिया गुर पाया, जिनको कृपा कही तुम्हारी, नानक अतुल सहज सुख पाया, अनदिन जागत रहे बनवारी, सोरठ महला चौथा, हर सो प्रीत अंतर मन भेदया, हर दिन रह न जाई।

में हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तं पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहो शरणाई। रहाओ ए संसार सब आन जाना, मन मूर्ख चेत अजाना, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, ता हर नाम समाना। जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सु पाए, वक्त अनूप अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई, रतन लुकाया लुके नाही, जे को रखे लुकाई।

हर्ष सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, किस प्राप्त होए। कोट मदे जनता ये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

दिहो बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आम तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुद्ध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुलाई ओत पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खा।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करने हारा, सोई खत्म हमारा, निरखो कह गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा। सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है भी होन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे, नानक तो गुर पूरा पेट्यो, सगले दुख विनासे। सोरठ महला पंजवा। सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता, तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहा सुख आगे मुख उजल जन का संगवड पागी पाये रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोगृह अंधकूप में नानक लेहो निवाही सोरठ महला पंजवा हर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकी तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरै नाही चरण सूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सबते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पाए सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जित पाए दयाला ताको मन ते बिसर न जाए सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुँचे मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो कर्म पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा कहो नानक गुर बिन नहीं करिये यह पूरन तत बिचारा सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिक काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त फुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याये सोई करण कारण सम

ते भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मन लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही किस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो कुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

न जाने तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर

त्रिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरत महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरत मेला पंजवा मृतक को पायो तन सासा बिचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद कै स्रोते हर नामा मुख

कै मन पावे। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम का गावे। कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी। रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई।

साद विकार बिखे रसमा तो असंख खते कर फेरे नान किती प्रभ पाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूरन अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा विखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरे गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अघाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई। जब तक समझम ज्ञान पत बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया काकी पूरन पाला। कल कलेश मिटे दुख सगले काकी जम की फाका पहु नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे बिगाता। सोरठ मैला पंजवा करण करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी।

साची दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस्ता के, कर सेवा सेवक प्रभ अपने।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हूं मैं बंधन के पारा। देखिवाड़ अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न पाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरठ महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपुरे की बाणी, जप अंग करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख मासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी सारी, संतो यहा बताओ कारी, जित हो में गर्भ निवारी रहाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी।

जाओ कै सिमरन होए आनंदा, बिन कै जन्म मरण कै दुखी, चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना तृष्णा सुखी, जा को नाम लैत तू सुखी, सास सास से आवो ठाकुर को मंथन जीरे।

सोरठ मैला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ विसर नाही कब हुए थे ए विद मन में पावो गुर पूरा थे क्यों वड़ पागी जन नानक कतह न पावो सोरठ महला समझवा जा के सिमरन सब कछ पाये बिरती काल न जाई किस प्रभु त्याग अगर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग में।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरमल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त, तिन पेटत दुर्मत खोई,

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज सुन प्रभ के चरण निहारया राखन हार।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ आनंद विनोद मंगल।

सदा आनंद करें मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की सात शब्द सत पाखिया सोरठ महला पंजवा तय कृपाल स्वामी मेरे तिथा तय दरबार सतगुर ताप गवाया।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई, सच्चे सच्ची।

सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। साप दया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, जो बारिक पित माता। सोरठ महला पंजवा, करती जा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा।

कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याय। अनदिन सुकृत करिय रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सितलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक गाय सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम

दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम।

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाये साध संग मिल त्याये मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक ना

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

तै पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला।

पदार्थ तेरा, जन नानक एक से आया, सर्व फला पुन पाया। सूरत महला पंजवां, करती जा दो पदे एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल हुए।

सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम ते आई रहाओ। जो मंगे सो लेवे, प्रभ अपने संता देवे, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक।

जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया।

सदा सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भया कृपाला रहाओ प्रभु करण कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा

हर आराधो हर आराध सबो किच पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

रहाओ। आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ, आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ, तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई। सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रहा।

हमारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

हर का जस रवना बिछे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पे साथी कर जहली ने सर्व तुदी ने आपे आप मिलाया कहो नानक

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुरपुरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नजरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत

0: सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभु सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभु अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए संतोष पया संसारे गुरु पूरे ले तारे संतो प्रभु मेरा सदा दयाला संतो प्रभु मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया
1: सोरठ महला पंजवा हर मंत्र

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यों परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले जात अवसर बीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रथ संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो। मानस दे लही, नानक कहत।

जब ही शरणसाध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रचपच, रैत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख

संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो कयो ना सूदो बहुत जतन में कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो कूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पह नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तक जाके, लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

एको चेतै मनुआ ना डोलै, पावत वर्ज रहावै। सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावै। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसै सुख पाई। जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी लाई। पिखिया नाम रजे।

सिरके पारी, दुर्मत कणी विगूती पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आमन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तथ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावथ। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए, गुर मिले पौ मन वसे पाई, पै मरना सच लेख, मज्जन दान चंगियाईया पाई, दरगह नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वसिया चूका पेख, ए तन हाथ सराफ को पाई, वखर नाम अपार, ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार, सोरठ महला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे, तिनके साथ

प्रसाद सदा मन वस्या, सब काज सवारण हारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख पौ के मुए बिल लाई। आवे जावे ठौर न पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे, दर साचे सचियारा। ओना दी शोभा जुग जुग होई, कोए न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राख्या उधारा। सोरठ मैला तीजा दुत की, निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई। सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है पाई। राम नाम चित लाए, हर जियो आपे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाए रहो। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचे शब्द विचार। पौजल पार उतारन पाई, सतगुर बेड़े चाड़। मनूरे ते कंचन भय भाई, गुर पारस मेल मिलाए। आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हों वारी हों वारने पाई, सतगुर को सद बलिहारे जाओ। नाम निधान जिन दित्ता पाई, गुरमत सहज समाओ। गुर बिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए। सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी सच सार। प्रेम पदार्थ पाई है पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवे अपना पाई, तिनके हो लागो पाए। जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए। नानक नाम हर मन वसे पाई, तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ मैला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई। पूरे पाग मिलाए, सदा सुख सोहागणी पाई। अंदिन रतिया रंग लाए, हर जी तू आपे रंग चढ़ाए। गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित ला।

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे पूड़यार। से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग। अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग। सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात। सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात। मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ। गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए। किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई। नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर। नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ। जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ। किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ। गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ। मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने। दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछे पाई। नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार। जी जंत प्रतपाल।

प्रम्पो होवे नाथ, मिल संत सवा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। गुर बचनी सुख उपजे पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासिय पाई, हृदय होवे प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई, एनस लागा पाओ। रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब पाई, हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुण यारे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला परपूर। सास गिरास ना विसरे पाई, पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा परपूर। जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई, जे किलबिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया। जिसनों की तो कर्म

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची सरणा।

आए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लाल अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई तै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर पूम बहु अर्पे नह मिली है हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हों हों करत बंद।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महल।

पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे फिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजै भाए पूरे सतगुरु राख

तीजा सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखियै जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिनी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सकें सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मन मुखा दे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया ज्यो कस्तूरी मिर्ग ना जाने परम दा परम पुलाया अमृत ताज बिख संग्रह है करते आप खुआया गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर तुद।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। श्री हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत्य।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए, अंदरों बारों अंधियां सुध ना काई पाए। पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रखे हर नाए। जिन गुरु के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए। पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही, ना कन पल्ले पाए। पर सके संतोख न आयो अंदिन जलत विहाए, कूक पुकार न चुकई ना संसार विचों जाए। नानक नाम विहोणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी। हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मित तिस हो बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई, हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा। पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार, त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

पाए, मन हथ सहज न बीजियो, उखा के अगे खाए, नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी।

सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी।

सा सिद्ध सा करमात है, अचिंत करे जिस दात, नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी। हम ताडी हर प्रभ खसम के, नित गावे हर गुण चंता, हर कीर्तन करें हर जस सुने।

पल का हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जन का। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल ला।

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

सतगुर मिले ता पूरा पाया, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा जिता खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहार है।

कपटे कपे कपाही सतगुर का पाना चित ना आवे अपने स्वाय फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा मन मुख माया मोह व्यापे दूजे पाए मनुआ फिर नाहे अन दिन जलत रहे दिन राती हों मैं खपे खपाहे अंतर लोभ मां गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चित लाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

आपके सुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई। वडियाई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई। गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई। ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ, कस कुंकम चंदन गारिया, बिन रैनो जगत निहारिया, पूत पिता इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन दाता।

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग।

पिखारी, अछत राज बिचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया, अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कर

सहज समाध उपाद रहत फुन बदे पाग लिव लागी कह रविदास परगास हृदय तर जन्म मरण पै पागी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं।

नहीं ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नहीं। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इकदमी, मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेवो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाये उर्वलिस।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्षर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीन ना पत होए, ता पत रह राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नदरी नानक नहीं कोए, खनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिय हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्व

लाखों संसार तुद पावे अद्धी परवान। नानक जाने जान सुजान तना फ्री मैला पैला। काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पड़े आना। दरगे करिए तीने लेख खोटा काम ना आवे वेख। नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखे सब कोई रहाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए। जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद।

राम कुमारी शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए सात नाम बड़े आई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए तनासी मैला तीजा।

अपनी पत खोई। गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हौ मैं विच सब कार कमाहे गुर प्रसादी हौ मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राजना श्री महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो सदा रहो रंगराता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण

नानक परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। सनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे

हमारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटके उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आग कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी रहाओ, संत जना की जात हर स्वामी। तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी। हम कैसे बुलग बुलागी, क्या हम किरम नान निक की रे। तुम वड पुरख वडा।

नानक दासन दास करो सब हम हर कथा कथा की। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक तल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभु स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी। जिनके वड्डे पाग वड ऊंचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी। तनाश्री मेला चौथा हम

पाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई तल मानो, हर हर कथा निराली राव, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवियो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली, तनासी मैला चौथा, हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती, हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती, हर बिन रह ना सकूं एक राती, जो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ, तुम हर सरवर अत आगा, हम ले ना सके अंत माती, तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती, हर के संत जना हर जपियो, गुर रंग चलू लहराती।

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा। कल युग का कर्म कहो तुम भाई, किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगत एकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साख जना की। जिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय, कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा। कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम, मनमोहन नाम जपीने। अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुर पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट, हर संग हरी सब संग भय। हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव छह खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो, क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा। गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे, हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी। हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर प्रगट हर दीनी। तब हर से प्रीत बन आई, बहुत चिंत विसारी। हर नाम उर्धारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा। हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याय, हर होए संतुष्ट इन पान। हर नाम मुरारी, मन जपिए हर जगदीश।

तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मैला चौथा

या तुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन कहे चाओ। सांसरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

जा नहीं रहा आप पे गुर चेला है आप पे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से और सब त्याग को है हर पानी त्रासी मैला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम देना सो ऐसा हर त्याय है मेरे जीड़े सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना राव जय हर सिमरन भया ते उपाद दत कीनी वड पागी हर जपना जन नानक कौ।

ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पास साहा। तना श्री मैला पंजवा घर पहला चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

ही संगे सतगुरु सब दी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना अतरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, को जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला तन्या, कर कृपा दियो मोह नामा बंधन से छुटकाए, मन से बिसरो सगलो तंबा गुर की चरणी लाए। साध

किसके बहराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिनस्यो टीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नहीं अल।

मन गायो कयो प्रदास सदा सुख मन में है सब गुरु पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई तरह पतवा।

होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि कृष्ण ना बूजी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना सूजी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं त्रापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न पूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी, नाम लैच कोट अगना से, भगत बांचे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे, सेव एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार पराना। शीतल शांत मनो सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पन्या। पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई सास पास मन नाम समारे ए विश्राम निद पाई। तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई। रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई। अनद रूप रव्यो सब मध्ये जब तक पेखो जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निज पतित पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए। जाप पाप पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई। नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अघाई। तनाश्री मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा। जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा। प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो। रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओडी थी। ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ। किसी वाद काट किसी पह सगले लर लर मुआ। हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया। गुजी पाए जले संसारा भगत न व्याप माया। संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे। तनाश्री मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे। जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है। रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझा।

सजन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक करके बोले तनात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जात ताप तमन बसबा कर उर्ग ताप ले गैन।

ए विध नै कतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन सनातरी मैला पंजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे नेचल ए मनवा बौर न कठूतावे।

संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक।

फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत कयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस देश

संग ना चाले तिन स्यों हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा रहा। साथ तरम नहीं पावे दीठा, चूठ तो स्यों रच्यो मीठा। दात प्यारी विसर्या दातारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे। हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछो ताने। जो खुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तना श्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार। खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम। हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार। साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अत मस्कीनी। संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के भगत गोविंद। सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र। तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम। उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम। देकर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास। प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे। डर डर पचे मन मुख विचारे। रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव। सफल मूरत जाकी निर्मल सेव। एक निरंजन जाकी रास, मिल साध संगत होवत परगास। जीवन का दाता पूरन सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए। जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे। जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगे मिले तिसे ही जाए। सेई पगत जे साचे भाने, जम काल से पय निकाने। साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार। कट कट अंतर सगल आधार, नानक जाचे संतरेणार। तनाश्री मैला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कह संग। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी। सामसलत परवान रहाओ, पत परमेश्वर गत नारायण। तन गोपाल गुण साकी, चरण शरण नानक दास। हर हर संति ए विद जाति, तना श्री मैला पंजवा। सगल मनोरथ प्रभ से पाए, कंठ लाए गुरु राखे। संसार सागर में

शोभा अनब सदा उलास रहाओ चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में।

नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा सना श्री मैला पंजवा जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज सुन नेकल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाचन पाजन थाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। तिस त्यों ना लाई हीत, जा को किछ नाही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय, सना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद बिचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कर अठवा दो पदे सिको अंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जब तक मोहे रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए नशा कह जा ले रहाओ। निर्तन कौ तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनाश्री मैला पंजवा, पय कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, ताको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम

आई सनासरी मैला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पोमवंत अभिमानी, राजा जाने सगल राज हमरा क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार जैसा बित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हार रहा। आन त्याग पे एक आसर शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल नानक हर गुण गाए। सनासी मैला पंजवा, जान को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जां का सतगुरु पूरा। ठाकुर गा ये आत्म रंग सरणी पावन नाम से आवन सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही। सनासरी मैला पंजवा, जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने, पाप करे कर मुह कर पावे पेख करे निर्वाने। जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे ना ही मन परमा तब लग मुक्त न कोई, कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। सनासरी मैला पंजवा, नाम गुरु दियो है अपने जा के मस्तक करमा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो होग रहाओ। नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह, नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। सनासरी मैला पंजवा, नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता, प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल। सनासरी मैला पंजवा, अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे, सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो, तैसे ही प्रपाल रहाओ। नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। सनासरी मैला पंजवा, संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे, राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जाम है संत बसारे, जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। सनासरी मैला पंजवा, छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात, एक नाम दियो मन मंता बिरस ना कतहू जात। सत गुरु पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात, नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। सनासरी मैला पंजवा, पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी, मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी। साकत की आवरदा जाए बिरसारी, जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी
ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नाश सब काढ़त साध जना संगारी। तनाश्री मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती। तनाश्री मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भय दुख पागे सदा सदा हर जाप। तनाश्री मैला पंजवा चतुर दिशा कीनो बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष सब लोकन कीनो दास का दुख विदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेते दयाल पुरख बख्शन

औखी करी न देखन दे अपना बिरज संभाले साथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पड़े साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। सनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खींच गया सब तन के प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब नुरागा। सनासरी मैला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल मां बिख्या में लज्जा राखी राम राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन। सनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक। सनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रवतारो कृपा कर पारो पूजा कह फूफ से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वड़े भाग पेते गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग्रहा। अनित प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन छिन में तारा। रहाओ कोई हो आ कर्मरत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहा मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभता के मद में, एनस रह

दीन दयाल सदा दुख पंजन तास्यो मन न लगाना जन नानक को तन मैं किन्हों गुरमुख होए पछाना तनाश्री मैला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो लोभ मोह माया ममता फुन जे कट माए पछानो रहाओ पर निंदा उस तक नह जाके कंचन लोह समानो हर शोक तेरे अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिसको तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो तनाश्री मैला नावा अब मैं कौन उपाय करो जे बिद मन को संसा चूके पौनिद पार करो रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच डरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पत्यो उदर परो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हो पत करो

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुरु के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे सात स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया प्रवान, ना तिस्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरुमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसे रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीरथ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनवा ने पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के कह मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख है दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, सात ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे, आनंद अनदिन हरख साचा दुख किल विख पर हरे, सत नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, फिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को केवड आखी है, हम मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सच है गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, तनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म सवाए जन्म मुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबत सिंजापे साचा सिरजनहारा, भगत सोहै दरबार सबत सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाणे, पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी, भूख प्यासो आप क्यों दर जाए साजियो, सतगुरु पूछो जाए नाम से आए साजियो, सच नाम ते आई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी, तनासी संत मैला पहला, तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी, तन जोबन आख की छाया बिरद पै दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या,
बूढ़ी कर कालियो गुर कह पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो, हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेड़ दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, हम दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सबाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी, जियो गुर शब्द विचारी ना प्यारी, निव निव भगत करे माया मोह जलाए, प्रीतम रस में रंग करे प्रभ साचे सेती, रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे, जियो झूठे वैन चवे काम ना आवे, जियो झूठ अलावे काम ना आवे, ना फिर देखे नैनी अवगुणियारी, कंत विसारी छूटी विदन रैनी, गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए, तन सुहागण नार जिन पिर जानिया, जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया, जियो हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती तिर रली आला जो बन बाला, तिस रावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

सहज नाम समावे। आप कर्ता करे सोई आप दे सा पाई है, हर जियो कृपा करे का नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी हम दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिकरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर है। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, हम दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सबा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत जिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया, नामो नाम मिली वडी।

जनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना, संत संगत राम हृदय बसाए राव। हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहान हो रा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर।

किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही, रहाओ सोबा राज बिबै बड़ियाई, अंत न साहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई, रहाओ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई, अजामल गज गन का पतित कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने, सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज न आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई, तज परम कर्म विद निखेद राम।

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

अरे जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए, दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो, पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटाओ, माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा रहाओ।

चमकारणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछरे थे मादो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ। साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव दिन भगत नहीं होए तेरी कह रवि।

मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काए फूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। रहाओ संतरा मस्तक बस्ता सुरसरी, स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे। स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी। अनित पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी, तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी, अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर। शिखर सुनागर नदी के नाथं, कर्म कर खार मफी तसरी। दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण, बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछोटी मफी तसरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले, राम चे नामं बदत त्रिलोचन। राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को। रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैता

जो पाती काया बहुखंड खोजते नव निद पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सार की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैतसरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म

अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैत श्री मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी। माया पुअंग दिख चाखा, हर हर साध मेलो जननी के। हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी। हम परे भाग तुम पाखा, जेवा क्या गुण आख वखाने। तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी। पाखान डुबत हर राखा, जैत श्री महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे हियरे, मेरे प्रीतम नाम पराना। दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर भाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जय श्री मैला चौथा। सत गुरु सा जन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा। जैत श्री महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे, होए खप खप मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाईए सतगुर माजा, हौं बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वडपागी। सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना। हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन। हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा।

पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुरु साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल, साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जय श्री मैला चौथा कर दूजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिले सुख रोई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जय श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर उमाहा राम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत उमाहा राम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर उमाहा राम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम उमाहा राम। जप जगदीश जपो मन माहा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम उमाहा राम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन उमाहा राम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमाहा राम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहा राम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमा

सब तीरथ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा, हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

प्रसाद सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदत, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक इहां सुख आजे मुख उजल, संग संतन के पाये।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जय श्री मैला पंजवा। तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभु को नीरो। बेकुमार बेअंत बड़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभु को। जय श्री महला पंजवा। लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से परम अंधेरा। थान सनंतर सबनी जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जय श्री महला पंजवा। काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी। अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोए मोहियो। तौ शरण पर्यो गुर पाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। पर्यो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा। प्रभ जियो मया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुपके जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा। अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों। वाको ब्याज न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमल अनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार पर्यो तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना। दीजे प्राण अकोर रहाओ।
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपाते, मां बिख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौता।

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, तै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया, कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर्यो शरणागत, अबे दान प्रभ दीजे जैत श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहा। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो।

संत। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे

जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पूरा।

चाले हाँ किस चिते या हिक दू हिक चाले अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पवजल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण।

आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याय है, त्याय सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है। तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिव लाई है, अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है, श्लोक रे मन पासो त्याई है, सब विद्या के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत। साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए, थान थनंतर आप जल थल पूर सोए। जल थल मई अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी, गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी। पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख समाया संत। अब मन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति जोत रले। हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या, गह पुजारी ने दया की ने अपने कर मान्या। ले अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले। बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले। जैसरी छंत मैला पंजवा, पाधानो संसार गर्भ अटिया, करते पाप अनेक माया रंग रटिया। लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे। कुछ दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूते डिठिया। किर्त कर्म ना मिटे नानक, हर नाम तन नहीं खटिया। उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही, पर मैं जोन असंख मर जन में आवही। पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे, बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे। रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही, बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही। जोगन गया बतीत जरमल बैठिया, कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया। नै नैन दीस है बिन भजन ईस है, छोड़ माया चालिया। कया ना माने सिर खाक छाने, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया। चरण कमल शरणाए नानक आया, दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे पजे श्री तर, कर अंग प्रभ जी तार।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्याओ सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

ऊर्ध्वमुख कुचील विकल नरक घोर गुवार। हर सिमरते तू ना जले मन तन।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छतर चमर तक आसन रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरन।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े

सूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मन इच्छ पुजाई, वडे भाव सत्संग होए।

गुरु नानक पतत उधारणे भोजन भिखम असगा गुरु बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एक है नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साज संगत स्यो। एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो ने बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचन सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथमु तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तो।

सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे, पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके, सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी, तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे, खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे, ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास, पाप

बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके।

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गै

गड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासत मिट्यो रे। जाको लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान, रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दह विस रव रया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कहो न मरते चूर कंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिद्धदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पय विस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण

मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरडी ठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिन से मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीते बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तक विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस्दिन, छुटी न मन की काई, सह नानक अब नाहि अनत गत, बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाण, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहो को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के पर हांडी अच्छे है, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी दो, बाणे के कर हींग अच्छे, पैसर माथे सींग गो, देवल मदे लीग अच्छे है, लीग सीग हींग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल अच्छे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद अच्छे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा। रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर प्याय सुखदाता, जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रात है उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर, इस जन को करो नमस्कार, हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा, जप मन हर हर नाम नित जाए, जो इच्छा सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर सो प्रीत लगाए, दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी, जित सुन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्वकल पूरा, किसकी

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला त्यागड़िए मानरा काय करे आपनड़े कर हर रंगो की ना माने सौ नीड़े तन कमलिए बाहर क्या चूंदे तैसिया दे सलाइया नैनी पाव कर सिंगार ता सुहागन जानिए लागी जासो तरे प्यारो। प्याणी बाली क्या करे जा तन कंतना भावे करण पला करे वो तेरे सा तन महल न पावे। जिन कर्मा किस पाई है नाही जे वो तेरा पावे लब लोभ अंकार की माती माया मह समानी इन्हीं बातें सौ पाई है नाही पई कामयानी। जाए कुछ सुहागनी वाहे किन्हीं बातें सौ पाई है जो कुछ करे सो पला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाई है। जाके प्रेम पदार्थ पाई है तो चरणी चित लाई है सहो कह सो की जय तन मनु दी जय ऐसा करमन लाई है। एक कह सुहागनी कहने इन्हीं बाती सो पाई है आप गवाई है ता सो पाई है और कैसी चतुराई सहो नगर कर देखे सो दिन लेखे कामन नो निज पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सब आई ऐसे रंग राती सहज की माती एन सफाई समानी सुंदर साए स्वरूप।

करम तरम दो छप खलोए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानियां पढ़े कतेबा कष्ट में करें खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानियां एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे मासपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याय करे गुम सोला काया तपर टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अगत्र जान सतान में होर भी उसकी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आख है सच सुनाए सी सच की।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला हो सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी से सार ना केते हर नामा खिन में दिन से सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए तंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै।

थापदा अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए दिन सुरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजित जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार

वारी कंत लिया सुहागनी मैं ते वदनी एहे से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे हे जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लियोगी पंथ बताए हुकम पछाणे नानका तो चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे तो पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया कही रे सोई जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई ताप मिले कुन ताप को लिव लिवे को तावे गुर पर सादी जानिए तो अन को पावे पानावारी हुए कर खर सार न जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने अप्यो पीवे जो ना

हरतिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया। आए मिल गुर सुख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए, जिन गुर का

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा के पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम से आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जगत छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

से आप हर पाया हर दर्जे पहनाया हर आप गलाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दी जय हम तिन के चरण पखाल दे तूर कोल कोल की जय पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम मेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुरु के त्या रंग रलिया माने सतगुरु दाता किए उस परे पसाओ हौ गुरु विट्टो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देख नेहा हौ वेख वेख गुरु विजसिया गुर सतगुरु देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आती है कहो कित दिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरुमुख हर आराध्या शेषा वदाने हो सतगुरु को सगवारिया गुरु बचन समाने तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंग।

आग में हो रे मना जाग में हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाम हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रतन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेव उत्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर

चार क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रखती।

चंगी हजार आलम एकल खाना हम सुनी पाक्षा सामले बरना अस्पत गजपत नर नरिंद नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन इती हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन बिद अमृत पावो। मन संपत जित सत्सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे। कहे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई। तगत हीन नानक जन जमते हौसला ही।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जोग ना कुंसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुंगी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश जी संकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सुजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वनजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से बाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेश लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान है, दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ पलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीत है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर बौड़ ना होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के प्यारा निसंग रहाओ। मुंद आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चित ना आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत्संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई, ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई, बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरमत नगरी खोज हो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई, रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, गुरमस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक सुखा।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तुही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साध लोभाई। रहाओ गुरमत रस रासो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पग आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक छीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम देओ लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अखर तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अंगिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा, तिनी अंतर हर आराध्या।

हर हर त्याय मन मेरे मन त्याय हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। सुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे तिस हल्त पलत मोहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर हिंदक कै पवे चारा। जिस कार वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौपीढ़ी आग जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा जिते हर आराधी है तिथे हर मित सहाय। गुर कृपा ते हर मन वसै होरत विद लया ना जाए।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे इसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

सन्नाटा को तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम कर सोई, ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहिब, मैं कुछ बिन अवर न कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच काश अगम तरी जय, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जय। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, क्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुद पे आख सुनाइए, बुरा पला तुद सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाइए। मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुद सब किस सूझे, तुद पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत कराई, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे केहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भय, गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर हर।

मैं रोग सब जगत व्यापिया। तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुरु प्रसादी को विरला छूटे, किस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे।

मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, ज्यो पावे तिवे बस रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद शिष्ट सब साजी, कोई सेवा करो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे, हर की वडियाई हों आख ना साका, हों मूरख मुगद नहीं।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सूरी महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजै अभिमान। तैसो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सकी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनों करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुई महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुर परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर ज्योत उजियारा, सेज विछाई सर्द अपारा। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा। उमक्यो हियो मिलन प्रवताई, खोज करो देखो प्रह जाई। सुन सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई। किन विद हीरो तीरे निमानो, मिलता जन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती फिर सज्जा गंता। पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे फिर।

हुए कृपाल सब मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन थे।

सेव कमावो क्या कहरी जाओ विदपित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन करते चरनारे पावो दान टीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक तो गिर।

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदासे पुरख वाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर को बिगत फूल बैठा सात जना का दर्श ना जीता। कभू ना समझे अज्ञान गवारा बोर बोर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिके नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बस करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे गल में पान ले लटकावे। परमे पूला साकत फिरता नीर बिरोले खप खप मरता।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता। सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी। सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती। रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी। जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी। मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

खरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जा कै दरबारे निमक निमक वसै तिस नाले हों किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक संग।

चाहे गीत नाद अखारे संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सुही महला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जाका सबक सुनत सुख सारे, जाकी तैल जमदूत बिदारे, जाकी तीरथ इस मने सुधारे, जाके सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

बादशाह शावा पारी मरना जोधी से सो काले करना कूड़े मोह लपलपताना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निधान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूट तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण अदारे तुम ही पेक पेक मन विसारे रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे ओट गही अब साथ संगारे अगम अगोचर अलखा पारे नानक सिमरे दिन रह नारे सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई जाको बिन सतबार न काई ए सुखना सोत नहीं जाने।

जाके सिमरन कछ पौ ना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ सात संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुष अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कार जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

पछाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पछाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, ए बिनंती सुन प्रभ मेरे, दे नाम कर अपने चेरे, रहाओ अपनी शरण रास प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने

कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सखिए प्रभ।

मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, वैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी।

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीर छदाए दुनी जो लाए। दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन के तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच सा।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित कोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक ना।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साथ संगत क्यों प्रीत बन आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर चर।

आद गावें गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभु तेरा जिस कृपा करें बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माधवे पाज

परण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उधर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साध संग तरे पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे। गुर पूरे मिल पाप सजायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याय। पूर्व लिप्त हुए ता पाई है, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाव जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंगिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाके संत रवाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग पर

अनित दया न पाए, अनित जन्म बीतियन परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे।

आमना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुखमन संतोखाए ऐसो राज ना किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर विद्या जे रच लो भाए सब किस तुम रह।

न आई। पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाई, अवलोकन पुने पुने करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, कितवो मन आशा करो जन का।

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध प्रिया पर कोहिरिया दिखना क्रिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देख है खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पसारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर ना तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद पियाई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौं सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। राव वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

निमुख सिमरत जी छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए रहाओ। को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाए जिन प्रभ के चरण पर आते मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई भगता बने आई प्रभ।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्षियों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे, रहाओ अंध कूप से काढ़ लिए तुम आप पे कृपा।

परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझसे कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहा गणती गणी न छूटे कतू काची देहे आनी कृपा करो कब करने हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अगे

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुखला।

बादशाही सच्चे से पी राते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पी।

कुर्बान जाए उस वेला सुहावी जित तुम रह द्वारे आया नानक को प्रभु कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही महला पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमानी अरदास करी।

तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक दाना।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

त्याई गुर प्रसाद पाव करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर सात संग नाव जाते सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल टंग न मीठे बैना रहा सह सिगार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप न रेख्या काई अंत न साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे से तीरतियां जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। तीन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे अपना से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे चित तन कैसी दुख जियो। बाकी वाला तल भी है सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा खात रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान भी गुची है बुरा पला दो नाल जियो। बिन शब्द पैर रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै। रहाओ मन तन सच सलाए।

गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूरख मन समझाए आंखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है, गुर की कार कमाए लाहा तारे आनिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया, इक नानक की।

बिन सदगुरु नाम न जाते गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव न जाते कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे गुरमुख हो वैता एको जाने हो मैं दुख ना संतापे बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिवलाई शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रहा समाई रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द विचारे जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कार्य सवारे मनमुख अंधा अंध कमावे विखटे संसारे माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए सच्ची बाणी गुरमुख आखे होमे विच्चों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा सब सुनाए गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सह सुवाए मनमुख सभी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए जम काल बादा कृष्णा दादा बिन गुर कौन छड़ाए सच्चा तीरथ जित सत सर नान गुरमुख आप बुझाए असर तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए तन मन सब किछ हर किस केरा गुरमत कह न जाए हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमे विचो जाए गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अग्न बुझाए गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग।

काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, इह मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल चित ही नाम पाईए, मोल चित ही नाम पाईए, नाही नाम पाईए गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम भुलाई,

नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां इको ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी,

मैं सच्चा वे परवाह रहा। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बदे मारी है वेला ना लहन। गुरुमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे कुटंब सियो सगले कुल डोवन। निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन, मोह काले ते निंदका नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवे तैसा होवे तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए। महापुरखा का बोलना होवे किते परखाए, ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवट पागी जे ओ

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसर त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसर गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार मिलिया होए ना विचार।

मनमुख मन ना पिजई अपने ले चित कठोर सब पै दूध पियाय अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओ ना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमै वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभै नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या, गुरमति सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुरु सेवन, अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना ओए जन्मे ना मरे, ना ओए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए, गुर के शब्द क्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन, हो तिनके बलिहारण है, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है, वडपागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुरपाणा मन लेन। वडपागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुरपूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंगा किसनो आखी है शब्द वेखो लिवलाए। बुरा तला तिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताई, कृपा करे त सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे से आई। जे भुख देहे ताई ही राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया द्वार है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी, जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई। जे तुद वल रहे ता कोई किहो आखों, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर, तै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसे, पी गुर देखन जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा, गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिरसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै,
गुर मिल गुर सुख पाए। तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे त्याए। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाए। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर नेफल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बच्चे ता गुर वड्याई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किच थाए न पाई। पाला ककर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

मिथ्या के संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन में रहा व्यापे अब तृष्णा कब हूँ नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिर बेगाना सगल ब्याज के वस्त्र दीना फिर प्यास जो जल बिन मीना कछु सियान उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल ले हो नानक अरदासे पयो कृपाल सा।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक त्याए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत ना कुटई, कबू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विसनी कूड़ कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगे पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाये, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्वमय, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा, अष्टपदियां

काढ़िया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरों से वाडिया हो ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिर महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तासुके तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मुँह दातड़ी नित हृदय रखा समाल पाप जुलाई पन...

या सैया कौ असंख मंजो हव वदाणिया चुप पोरी नजर निहाल देह दर्स रंगवाणिया जय जिठे मन तीरी है किलविक वंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूरब लिखिया पाया नानक संसाय सुही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया नाम निधान अपार पगता मन वसे जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंदिया नरक सुरत अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सो तत विचारिया नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है विसर नाही दाता।

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हौ कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हौ सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हौ इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सोही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हों सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल है आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूप प्यास जियो गुर शब्दी सो

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो। ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

आओ जियो हाँ आपको बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकम आओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया फसाओ जियो मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निवला

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे पा बिन फिर तन कुमलानी।

पूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वैसे नानक मैं वर्षा चा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहर बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई जांजी ना उन्हरहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुन्नी बाली बाले हेते नानक साथ सब सुख मैली गुरचरणी प्रभ जेते बाबुल दुपड़ी दूर ना आवे कर पई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोही है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

मिलाए, हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया, अंजन मेल कया मन मानिया, कर मंदर सोहाए, पंच शब्द तुम अनहद वाजे, हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे, मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ताप प्रभ पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया, थाम सोहाया, कार्य शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजने आया। मन तन अमृत भिन्ना, अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारो, जंत ते तू सफलो दाता, सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी, आपे कारण की ना, सुनो सकी मन मोहन मोया, तन मन अमृत पीना। आपन राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा, अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते, तुझ बिन कौन कहाए। काल विकाल कहे देवाने, मन राखिया गुरु ठाए, नानक अवगुण सब जलाए, गुण संगम तब पाए। राग सूही महला पहला, कर तीजा

मेरा राम मंचाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कहीं नहीं केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

गुण संग्रहण सी खरी सरसी जहाँ रावी रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदासे तस्कर मार वसी पंचायण अदर करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रभु दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपूरे सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलोआ सिर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवान पत मत पूरी पूरा परवाना ना वे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभु जैसे अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोग सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा कहो वे वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़मल

आखंडता को जाई है जे फूलड़ा होई। जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले। सुने देखे बाज कहे है दान मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नाम।

सोई, गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई। सुख सहज आवे सास पावे, सास की मत क्यों टले। स्नान दान सो ज्ञान मज्जन, आप अचलियो क्यों चले। प्रपंच मोह विकार साके, कूड़ कपट न दोई। मेरा मन राचा गुण रवे, मन पावे सोई। साहिब सो सालाही है जिन कारण किया, मैं लागी मन मैले है किने अमृत पिया। मत अमृत पिया ए मन दिया, गुर के मोल कराया। आप नड़ा प्रभ सहज पिछाता, जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जे तिस पावा, क्यों मिले होए पराया। साहिब सो सालाही है जिन जगतो पाया। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता। प्रीतम से मन मान्या हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारया। पंच को नायको आप सिरंदा, जिन सच का पिंड।

मत होई। अंजन कैसा अंजी है जैसा फिर पावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे। आप जनावे मार्ग पावे आपे मनुआ ले वे कर्म सुकर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे। तंत मंत पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर सबदी सच जानिया। साजन होन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करे रलिया कर्म कर्म सब आया अठ हठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप मुझसे मत होछिए क्यों राह पिछाने। क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूढ़ो तंदली। दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मंत्र देसी जेती है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा तो करे सब सबद पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न पुले। जय जयकार करे तुझ पावे गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सोहे जा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो। जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुन।

तिन जन्म मरण पौ पागा। अंदरों दुर्मत तूजी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अमदिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा। गुरते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविक सब गवाए। सब को तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा। जुग में राम नाम निस्तारा साजन आए उठे कर माही। हर गुण गावे तृप्त अभाई हर गुण गाए सदा तृप्तासी। फिर भूख ना लागे आए जय जिस पूज होवे हर जन की। जो हर हर नाम से आए नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े। हर बिन को दूजा नाही साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा। भगत जना की हर जियो राख है जुग जुग रखदा आया राम। सो भगत जो गुरमुख होवे हों मैं सबद जलाया राम। हों मैं सबद जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी। सच्ची भगत करें दिन राती गुरमुख आप लखाणी। भगता की चाल सच्ची अत निर्मल नाम सच्चा मन भाया। नानक भगत सोए दर साचे जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी। हम जिन भगत करे दिन राती कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कह दर साचे अमदिन नाम समाए।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, बिन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सत सोई, नानक ना मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया। सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया। हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे, गुर कै सबद सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया। सुही महला तीजा, सबद सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हो मैं सब किलबिख काटे, साथ रखिया उधारे राम। सत रखिया उधारे, दुत्तर तारे, फिर पाव जल करन न होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच बिठा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई। नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सतगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। साचे नाम सुख होई, मरे न कोई, गर्भ न जूनी वासा। ज्योति ज्योत मिलाई, सच समाई, सच नाई।

सच्चा सब सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगति करंगी दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवै

फिर मैला वेश ना होई गुरमुख बूझे कोई होमे मार पछाणिया करणी कार समावे सबद समावे अंतर एक हो जाणिया गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची शोभा होई नाम कामन फिर रावे अपना रव रहा प्रभ सोई गुर की कार करे तन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सत समाए सत वर कै सब थाई सच्चा शिगार करे दिन राती कामन सत समाए हर सुखदाता सब पछाता कामन लया कंठ लाए नानक महली महल पछाणे गुरमति हर पाए सातन बाली तुर मेली मेरे प्रभ आप मिलाई राम गुरमति कर चानन हुआ प्रभ रव रहा सब थाई राम प्रभ रव रहा सब थाई मन वसाई पूरब लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रभ पानी सत सिगार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल कोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते हैं नाम नवे निध पाई सुही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए हर गुण गावो नारी अंजिन पवित करे गुर आगे सातन कंत प्यारी गुरु का शब्द वस्या कट अंतर से जन शब्द सुहाए नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी

और पाया कर्म विधाता। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, हर वस्या मन मुरारे, नानक मेल ले गुर अपने, गुर कै सब सवारे, सूही महला तीजा, सोहिला हर राम नाम, गुर सब दी विचारे राम, हर मन तनो गुरु।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुहाए राम मिल सब सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जो चले सतगुरु भाए।

दूर वसे, टिकना मन आधारो राम, टिकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको एको राम कतारो राम, गुर सेवन सब गुरदाता।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नाम सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर की ला मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकप कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो।

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ ठाकुर का

से हम मन संदेवा सतगुरु है मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजू खरी।

चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा पुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक ना।

मिलाई। मेरे मंथन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर सरदा सेज बिछाई जन नानक हर प्रभु पानिया राम राजिया मिलिया सह सुभाई। इकत सेजै हर प्रभु राम राजिया गुरदसे हर मेले मैं मंथन प्रेम बैराग है।

हड मह नाम लो गोविंद नाम मजीठा थी रहे लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोह मगन थी रहा झूठ संग लपटाना नानक दीन शरण कृपा निद राख लाज भगवाना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना सुन बावरे जो आया तिस जाना नेचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई है पागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहु मन दी जय संत ना की जय गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आस वखाना सुन बावरे क्या कीचै पूरा मानो सुन बावरे हब वैसी गर्भ

पाई साचे सृजनहारा जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दस के त्या गुरपुरा नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया सुख दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै विनाशे सगल नानक प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है इक हर बलराम जियो।

संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे काज सगल सवारिया। सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे। अनात सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे।

बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत निस्तरया, हर चरण के आए सब फल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जप देखा तप सोई।

वरदाना कर मेरा मत साई कृपा की जैसा मत दी जय हाथ पैर तुत्याई गर्भ ना की जय रेण हो भी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अट गहर गंभीरा तुम फिर हम दोहरिया राम तुम बड़े बड़े बड ऊंचे हो इतनीक लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे ठाकुर भाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माना नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माना होंगारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम हो बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यो मन माना प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला सूरी महला पंजवा साजन पोत सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम से आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा दिहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जन पंख सा दे दुख न व्यापे कोई जल खल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रम नेर हूते नेरा
नानक को प्रभु कृपा की जय। नेत्र देखें दर्श तेरा, कोट करन दी जय प्रभु प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सो क्याना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहत्याना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा की जय, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे, चरण चले प्रभु मार्ग राम। पर सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस पार ग्राम। पर जल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। महाविकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए, सगले कुदरत कीम अपारग। कहो नानक प्रभु कृपा की जय, मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई, एहो तन होए वडपागा राम। एहो रंग एहो रस होगा, हर चरणे मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभु की शरणे, करण पारं गोपाला। सब किस तेरा तू प्रभु मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभु कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सुही महला पंजवा, हर जपे हर मंदर साजिया। संत भगत गुण गावे राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजावे राम। हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, कथी अकथ कहानी। पला संजोग मूरत पल साचा, अचल नींव रखाई। जन नानक प्रभ कहे दयाला, सर्व कला बनियाई। आनंदा वजह नितवाजे, पार ब्रह्म मन उठा राम। गुरुमुखे सच करने सारी, बिन से प्रम पैच उठा राम। अनहद बाणी गुरुमुख बखानी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करया। कर में नवनिद परे पंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभु कदे न विसरे, पूरन जाके भागा। छाया प्रभु छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम। दुख पाप का डेरा काठा, कारज आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच कर्म पुन फलिया। सो प्रभ अपना सदा त्याई है, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल में यल सोई। जन नानक प्रभ की शरण आई, तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बनपाल बनिया, प्रभ पर से हर लाया राम। मेरा मन सोया नीत साजन सस्ते, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वादाया। करी नदर स्वामी सुखेंगामी, हल्क पल सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिए, जियो पिंड जिन तारिया।

मिल सतगुर पार लंगाए राम। गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई फल मानो तामन सह समाना। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई, अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कब होना जाए। सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने, कहो नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने। अनग दिनो तय मिट सकिए मंगल सदा हमारे राम, आप नरे प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम। सह सुहाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया, ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन किस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा अचल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगाते। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एओ थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुर पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सुहाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर कृपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद तुनकारे पत बिचारे संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बोर न पाइए जोनिए, नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साधे छुनिए। सुही महला पंजवा संता के कारज आख खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगर विसूरे, पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया।

आप खर्चक बिलछक सुख पाया करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई हम कर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ ना थे दुख न नेड़े आया। सांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य इतनी ही किया मानस क्या बेचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी जिन उद्यम किया काल के रात इसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती ममता ने अमृत पी जय बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान अवगुण को ना सितारे पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमक ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कह।

बार राग दोष से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोकां नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आपने ली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समार नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल पौड़ी। आपे तक प्रचायन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई ऐन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसने माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा तारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सूह है वेश लुभाए सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूह वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सुहावे सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेय सहरे बहु सोदा पाए तिस पूज करे सब संसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विदान पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आइए मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख

सूहा वेस छड़ तू तांतिर लगी प्यार, सूहे वेस तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार। सतगुर मिले सूहा वेस दया होमे विचो मार, मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा पर लाल करो सिगार, आवन जाना विसर गुर सबदी विचार। मुंद सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किस साथ न लिता। सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता। जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया, नावे जेवड होर दात नाही किस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया।

जाओ। रात कारण तन संची है, पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए। महला दूजा, बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा, मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले, तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी, करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाई करता करे सोई। श्लोक महला दूजा, जिना पाओ तिन नाहे पाओ, मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया। महला दूजा, तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार कबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजै तंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोय मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखता रंग सिउ हो मैं तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप खड़ोवे आप कर आप पीने आप आहो गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्तक लहू मजूरिया मन मन खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बिबे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रव रया हर हीरा हीर जन्म मरण का दुग गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला नानक इन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े कित निबंधे ताल। महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लहास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रया सो कृप सुजान गुर प्रसादी सेवी है सच सबद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर परयान छोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन फोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या दो पा चढ़िए सहोर बहर धोती तू मुड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अननात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलायदा जग तंदे लाया इक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया दै दिस ए मन पाऊंदा गुर ठाक रहाया नाने नो सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ पार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन दिव बग्गा तपे कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी
काया कोट रचाया हर सच्चा आपे एक दूजे काय पुआयन हों मैं विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंग सा मन मुख संकापे जिस आप दूजा ऐसो बुझसी जिस सतगुर खापे सब जग खेल रचायन सब वरते आपे श्लोक महला पहला चोरा जाड़ा रंडिया फुटनिया दीवान वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान सिफ्ती सार ना जाननी सदा बसे शैतान गधो चंदन खौली है पीसाहू स्यों पान नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान पूरा कट्टर कछिया पूरा पैनन मान महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया हों मैं झगड़ा पायन झगड़े जग मोया गुरमुख चगड़ चुकायन इको रग रहा सब आत्म राम पछाणया पौदल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे, दूजी कहरे लगिया फिर जोनी पावे। नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर के सब सलाइए।

क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी। हूँ क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई, जो तेरी शरणागति तिन लह छाई। नानक दे प्रभाव है तिस तिल न कमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की।

राम को नाम न कभू लीना, राम न जपो कवन मत लागे, मर जैबे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख कर

सूही कबीर जी, हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, पल गए बग बैठे आए, रहाओ काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो, अमल सियानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जा को हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया पया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो, ललित थाके नैन श्रवण सुन, थाके थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक स्मार।

हो जब लग कट में सासा जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन ताले पासा जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बचन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरुष समाया उन दिया नाम लिखाई तरुण राय का दफ्तर सो दिया बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका ना विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे ना अंतर राखे अगरा देख ना सुने अपाखे सो कत जाने पीर पराई।

जाके अंतर दर्द न पाई रहो। दुखी दुहागन दोए पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत न कीनी। पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी सोही। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही। संग चलत है।

जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको अंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोपीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी में पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए ना मेला। कै करीब सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

सच में रहो रजाई रहो, जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या सिकराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुझ पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना, होका स्तन पाई, भगत हीन नानक जे होएगा, तां खसमे नौ न जाए। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेश कलंदर, कठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुत जन्म ना।

तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे कान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलख।

साधन चार नाम मिले चांदन ध्यान चक्षुदी सहसा नहीं कोई बाप से वे जात न होए एक एक को ना ही पौ कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मंगते माया ठाक रहे मन खाते पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम खुले गौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह न सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रब विसरे हो मरो दुखाली सास दिरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कहिए गुर पाए प्रब अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हो मैं मेठ चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों जित हम खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके ते दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे नानक साध हो वै जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल्य क्यों तोले आ जाए दूजा होए तो सो जी पाए किस ते दूजा ना ही कोए तिस दी कीमत किक्कू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुखदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परके आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा लेता सच समाए आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहित्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा कर

क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरु चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पावे भगवान। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा, इक ना कर मैं देवड़े आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा फाद बनाया पूरे, देखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने, इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौं जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना, जत संजम तीरथ कोना, जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना कर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी त्याया हर हर, जग से पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए, चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल मारी गावे आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए, हर जियो आग वसे मन आए, आचे शोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए, गुरमुख राते सब रंग आए, निज पर वासा हर गुण गाए, रंग चलू ले हर रस आए, यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा, नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा, पूरे गुर ते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई, हों में माया शब्द जलाई, दर फाते गुर ते शोभा पाई, जगदीश सेवो मैं और न काजा, हम दिन अनद होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहाओ मन की प्रतीत मन से पाई, पूरे गुर ते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसर वेखे, बहु न मरे न जम पेखे, कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुरु दिखाए गया अभिमान, सब ही लागा सहत्यान, हम जिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम से आई, जह देखा तैरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का सब तक मीठा लाया, नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती, क्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिख लिखे गुरु पाया, हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रांत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कौन कौन की गत नित कही है, हर की ये पतित पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे, हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण, हम पापी राख पटना, हर दासन दास दास हम करियो, जन मानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा, हम मूरख मुगध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर,
हम आसरहीन अकर्मा, मेरे मन पज राम नाम है रामा, गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जति है वड्डे कर्मा, नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख सहमा, कोय फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तो पूर्व लिखे वड कर्मा, गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुगत मोह बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा कर न सके हैं, प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन ऊपर कृपा कर तारी, मिल सतगुरु पार करा। रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मती जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे, जो संग पासत लोह तरा, साकत न होची मत मद्दम, जिन हर हर सेव न करा, ते नर पाधीन दोचारी, कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया, जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम दोहे थे कल युग, खेवट गुर शब्द करो, मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो, सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो, गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब दिख रखो, राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी, गुर सतगुर पार गम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी, हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनित उपाव चितवी है बहु तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नी, अपना पला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित नाच तैनी, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी, हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी, मत सुमत तेरे वक्त स्वामी, हम जंत तू पुरख जन तैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तिवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा, अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अम दिन अनद अनंदे, तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे, जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकट मूड माया के बद्दिक, विच माया फिरे फिरंदे, कृष्णा जलत किरत के बादे, जो केली बलद पहंदे, गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे, जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे, जन नानक आपे आप सब वर्त है, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल हर तेरवा, बोलो भैया राम नाम पतित पावनो, हर संत पगत तारनो,
हर पर पूरे रहा जल फले राम नाम नित गाय हर दुख विसार न जाओ। हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसार हमारा। गुर पेटिया है मुकुट दाता हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा। पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निराशी। सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नाम के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे। कर कृपा मोह मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो। क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा फिर से। हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्व पुयंगा हूं मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिगार करे नहीं पावे जहां होए कृपाल सं गुरु मिलावे। हूं फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर किसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल। जिन चाखिया किस आया फाद जो गूंगा मन में विस्माद। अनग रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव। विघ्न न लागे जब अल्प वेव करत पुनीत सही गुण गाए। दुर्त गया हर नाम से आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप आज जुगाव जाका वड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाने मूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रपाले। बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे। अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तूरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई। दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़। हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे। जा कै संग सदा प्रभ दसे। प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत। मन सन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा या नड़िए कह कर गावना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक। अवर स्यान पा बिरथिया प्यारे रासन को तुम एक। रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम अरादे नाम वखाने हर नामे ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा। नाम की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो।
अमृत नाम अराध्य निर्मल मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्द कोतारे पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे। बिलावल मेला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड़ गई सगली, सुखी ना होत जियो। मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो, नानक से दसोगा वंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सकिए मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सकिए अंत तज जावत माया। रस पोगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साधन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसोवड पागणी सखिए संता संग समाई है, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाइए। कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाई है, प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक से आई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा हिक को उतार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो का सारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल न जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा तूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे

हाँ, बंधन काट मुकुट गुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत सोगा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिली है जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्रिक ताना हर गुण गाया, देहो परत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वड़पा।

रहाओ। ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना साहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय से आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विखम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वंत्रण त्रिभुवन हरिया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल। रहा साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, हम दिन कीर्तन हर गुण गान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल काग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार, रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की। तिस आगे ही मारे कृपार, नानक दास ता की सरनाई। जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। पाप संताप सब ले गए, बिन से ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवसत जोग। आए बसो पर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल। रहाओ अहं बुद्ध को बिन सना, एक उर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध अनंत सुख, पूरे गुरु दीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत में, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु, कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया, नानक गुर पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौक दे। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यो बालू कर बार, बिन सत बार ना ला गई। ज्यो कागद बूंदार,
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए परबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तेज मुरार। बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट कया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मत्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा मैला कदे न हो गई नहला गै दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहो जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कहीं न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्श तेरा पार जम गुण तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सदगुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाये कहिए काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अगर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा निरत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाए जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो करोदी दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता

इस अभय दान दीता सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता श्रम करते दम आज को ते गणित नीता कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध लपट कपट गृह विद्या मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिर मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे पगे जब सात संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेकल आसन मिटी चिंत माही दोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया सात संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दुखना एखिन में जारी दया मया अब निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ जगत सुधारन साध प्रभ तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उपत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल परम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

है। प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छर जाए, तुम्हारी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर, जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली, सब किछ तुम ते मांगना।

राज मिलक सुतबारिया अग्नि में जाल, संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार ते बिकु समान, भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पट खोई, साकत स्यों मुख जोरे है अदवी चों टूटे है, हर जन की सेवा जो करे इत उतन छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेटक साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर, हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेणका ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसरे अन कतह न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो, सत संतोष दया तरम शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे कह हर गाया, ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया, अंतर जामी आप प्रभु सब करे कराया, पथित पुनीत कणी करे ठाकुर बिरदाया। मत फूलो मानक जन्माया परमाया, नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनिक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत विलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे, जिन अनिक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे, ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा, एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण तास, जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रख है आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है, करनहार जो कर रहा साई बड़े आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाय, चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंगराता। बिलावल महला पंजवा, महा तपत ते कई शांत पर सत पाप नाथे, अंधकूप में गलत थे पादे देहाते, कोई हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आशा।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो इस कर कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम एह कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ परम मोह की अपने प्रभ आया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभु के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नगर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यामन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलरित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दे अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस्तीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बचे।

चीत करता करे काम को काटे, कीरी पे हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काज। बिलावल महला पंजवा। खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना भला बसिया प्रभ संग। रहाओ बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओह स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो

अवर उपाव सब त्या गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब हटे, रोग शीतल मन पया, गुरपुरा आरा गया, सगला दुख गया, राखन हारे राख्या, अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का गया, कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी, नानक निर्भया, बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया, नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की, ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ, शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान, बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ, सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है पर दुश्मन पागे, बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधिय मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जम जपे अंजन सब जागे, तंत मंत नह जोई तित चाख न लागे रहाओ, काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे, जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे, रहाओ, करण कारण समरथ है, किस दिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति, साचा मन जोर, बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग पाते बहुर ना पाओ, बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुन गाओ रहाओ, कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ, बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लखट सास, रहाओ, मात पिता बंधक

तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास, बिलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाय सब।

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभु गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में देख प्रभु की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभु हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभु किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणित हर सब जीव सहाथ, नानक कर शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा हुए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम प्रभ शरणागति जाका बड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, औनाथा प्रभ मित गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

मिटाए जीवालियन जहाँ कावड़ प्रताप दोष हमारे बख्शियन अपनी कलकारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

थाकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए। अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख पंजन मोहि चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दिस पाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुरु मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिए भगत वचन कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राणी, ऐसे मन विसारण।

दात आख पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तम के जात। त्रिपत अघाए तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ के

गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप, चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिलसे, कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। पाप लाया गुर सृजनहार, सब गुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार, रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, इको अंकार सतगुरु प्रसाद, सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिलसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठली खुली अनुपा, रहाओ विस्मन विषम पे जो पेख्यो, कह न जाए वडे आई, मगन पे उहां संग।

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंश ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासु राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्राव। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज संवारो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केश गहे फिर आवत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वड पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंदमयी। जब ते पेके साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तह रिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्राप्त पेट ले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, बंद बंद हर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहा, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना साकू। गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखियो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल करी, पूरन पूर रहो कृपा निद। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता।

ज्यों कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानकारा था आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पै स्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना। हाप दे राख है अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय मैं दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख पाए।

सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सोती बिखिया बन गाहे। चरण प्रभु के गोहित पाए पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही बसे साध कै संगा। रहाओ छिन मैं थाप निवाजे ठाकुर नीच कीर्त ते कहे रजंगा, कभू न बिसरह ही मोरे ते नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आदय, सर्व जिला का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख है अपने को किसनो लगे न ताची बाल। दामोदर दयाल स्वामी सर्व सो संत जना तन माल, नानक जाचित दर्श प्रभु मांगे संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मंथन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश है तुह पदार्थ बड़ काज नहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात। रहाओ काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना खाद बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस्ती ने जिन

जप निर्मल मंत्र बिलावल महला पंजवा। पाप पाप से राखे आप शीतल पर गुर चरनी लागे, राम नाम हृदय में जात रहो कर कृपा हस्त प्रभु जी ने, जगत उधार नवखंड पर ताप, दुख बिन से सुख आनंद परवेसा, कृष्ण बुझी मन तन सच त्राप, अनाथ को नाथ शरण समरथा, सगल सृष्टि को माई बाप, भगत वत्सल कह।

पार ब्रह्म परमेश्वर से आया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ गुरु पूरा पेटियो बढ़ पागी अंतर जामी सुवर सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ सम्राट ने मानिया।

दो में थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जम के, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावन महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्फोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे असीमा दो खींचतने दिन श्रेन मन माए बसत है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाओ।

ला पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुरपूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नीमया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर

आवत फिरत मद मावत बिखियाराता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

listening. अमुक भगत अनक जन तारे सुमरह अनक मुनि अंगले टिक निरतन तन पायो प्रभु नानक अनक

पावो, तब रस मंगल गुण गावो, अनज रूप ते आवो, नानक द्वारे आयो, तो मैं लाल पायो री।

आहे मन अवर न पावे चरनावे चरनावे उलझियो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक कह हर लाहे अन से टूटी है रिख से छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण है। राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पै जी जानो रहाओ।

कहां पयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे। जोग जग ने फल तुम्हें मानो जो प्रभ जस बिसरावे। मान मोह दोनों को पर हर गोविंद।

तो ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत सुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म काहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

सब कोई कत कत बाद करे दुख होई कत कहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे हो सरजाल कट कट व्याप रहे।

गीत राग कन ताल सुकूरे त्यो गुण उपजे बिन सह दूरे दूजी दुर्मत दर्द न जाए छूटे गुरमुख दारू गुण गाए तोती उजल तिलक गल माला अंतर क्रोध पढ़े नाटशाला नाम विसार माया मद किया बिन गुरु भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान गर्दव मंजारा पशु मलेच नीच चंदाला गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये बंधन बांधिया आये।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपे अल...

ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈ ਆ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਨੈ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहके

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाव पवे तित अय्या। दासन दास दास होए रही है, जो जन राम भगत निज तैया। मन बुद्ध अर्प तरों गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन तृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द।

आसा आस करे नहीं बूझे, गुर के शब्द निराश सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होआ, मन देह जिस चल चल गवन करैया। प्रभवन करे बूझे नहीं कृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सुखे बहु तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया। त्रिपत संतोख मन शांत न आवे, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेत उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतु पैया। साधु शरण परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण सूद वे चंडाल चंडैया। नामा जय देओ कंबीर त्रिलोचन, औजात रविदास चमियार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वचल अंगीकार करैया। नानक शरण

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगाइया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। खिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया।

भैया सतगुरु दया करे प्रभ मिले, मैं तिस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हौ खिन पल रहे।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुरु गुरु करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले छिन टील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताए क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बहां पकड़ नानक कद

चोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तर्क आकाश किए बैसन को थाओ।

पंचभूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम भूखे मोह प्यासे इक रस चाखे सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक दर कर साथ।

डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुवाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमें मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वक्त है अवर न बिया, दूजे से जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

मार न का कह कोए जिस दा साहिब डाडा होए किसनो मार न का कह कोए साहिब की सेवक रह शरण आई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए गुरमति सांत वसै शरीर।

मेरा प्रभु अदरया परपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए, एक को वर्ते अवर न कोए, मन रोष की जय जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारे, कितनी बार सब सब सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, कितनी बार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चले सदा सच समाए, कितनी बार ता जा सच रात।

अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख तारी, पव पव पर मैं काची सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुरु सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक कितनी वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, कितनी वार सेवे मुग्द गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम।

मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब पिगारिया कर जोर गुर पै कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिय सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कै पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगतूती संग तकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाइए, दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। मिलावल मेला पहला मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे देख पवनी हथ न जाना, नानका सच गह रहे। पिंगड़ी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बाणी को बिरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया। महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार विजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साथ सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंगेरा राम। हर हर हर हर राख प्रभु नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभु अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम। भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम। बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन नीना राम। सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड भाग। गुर पूरे वेखा लिया नानक हर लिव लाग संत। मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा जे राम। गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम। हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटाई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम। अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम। गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम। जन नानक नाम विदसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मूड मिलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम। जन नानक नाम।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। दिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ ते कर बिनंती मिले हर जस लाह बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह।

मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सभा जी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे वाजे अहमत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिवलागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे वाजे दिन श्रेय उमा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत परे भंडारा बिन वंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज मन पागी है पलक सगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिन वंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिन वंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

सगल जा को करना पत दक्षिण लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख परे हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते चीत चित वो मित अंधारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया तिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुर्चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा त्रिम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

पाये फल मंगे राम, नानक प्रभु शरणागती जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहां पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम, सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम, गुण गावत गोविंद के सब इच पुजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस्त मेरे

हर उत्तम हर प्रभ गाव्या कर नाद बिलावल राग। उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग। सब दिन सरेण गुण उचरै हर हर हर उर लिव लाग। सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग। जन नानक जी।

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। पौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए, जे वस्त मंगीए साई पाईए, जे नाम चित लाईए, गुहज गल जी की कीचे सब गुरु पास ता सर्व सुख पाईए, गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख ले जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस्ती संकोच हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैव पकड़िया गुर के सह सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे, मानस के देवते पड़े सच्ची पदक जिस दे, हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यों बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए, हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मल जाए।

जिस बख्शै करतार, नानक गुर प्रसादी यो मन तां तरे जा छोड़े अहंकार। सासा मनसा मारे निराश होए, गुर सबदी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई, अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी। कूड़ियारा के मोख टिकिए सच भगत वध्याई, सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई। जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई, श्लोक महला तीजा। पूरे पाग सत गुर पाइये जे हर प्रभ बख्श करे, तो कावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए। अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना पहनना नानक नाए वडियाई होए। मैला तीजा ते मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान, सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान।

किए, जो कुछ हर करावे सो ओय करें, सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुर के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुर अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे, दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निवला।

हर का नाव मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्रगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। महला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक सो जन पाई, सतगुरु सेवो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दुख व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगति हर तन खटिया और सब जगत परम पुलाया, गुर प्रसादी नाम मन वसिया अंगने नाम से आया, दिखिया माए उदास है हों में शब्द जलाया, आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया सबके सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण पुल्ले हों में मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चितलाया,

अवर न कोय गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना कट्यो से देवा लिए जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करे अपनी प्रतीत फोन सगवादी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हस ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला चीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचो जाए। जो किस होए सो सहजे होए कहना किसु न जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए। मैला कीजा काल मार मन सामने समानी अंतर निर्मल नाओ। अंधिन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंधिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया। जो किसे क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अपे कोई क्यों देवाए। इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे कैसी बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चह कुंडा विकाला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

ना ए हट विकाए, गुर कै शब्द पर जा लिए, ता ए विच्चों जाए, तन मन होवे उजला, नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण शब्द है, गुरमुख पाया जाए पौड़ी, सतगुर की वडियाई सतगुर

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हों मैं अंदर सन, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी जंक्षो वाज करन, नानक साकत नरक में जम बजे।

तिस सात गिरास सदा मन वसे, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसे, हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया, रस संत जना से।

तू दे रे, चलो तुम नतर को तक्का दई है रे राव। बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जई है रे, मानस बपरा मूसा तीनो मीस बिलैया खई है रे। तनमंता अर नि तन मन ही पापी कछु न कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना करो बाद नहीं जानो हर गुण कथित सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरे बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम चूको रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी शील कर्म जब भगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संखी ए काया ए लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साज नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत पालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ दिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार

आधारी क्रम कै पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाते सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दही परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखोत्मो जाके रेख न रूप रे मन हर पज परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दिसे न दिसे जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुर साची जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निज ता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जो सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया से अटके ले नरजा मन को ले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, हस्त दशा सिद्ध करतले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत

बिलावल जिह कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्रह्मन बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिखोए पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप।

पहला चौथा कर पहला जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए हर जाने सब किस जो जीवर तय प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाई हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिरथी जाय रहा जो भी से माया मोह कुटम सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहा करें ये बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब चढ़ाई जो कुछ आस अवर

सुन में चूट दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराए, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए, गोंड महला चौथा

ऐसा हर से लुप्त आई है जो छिन में किल एक सब करे बिनाशा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी जिस सेवे सब पुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा जह जाय तह।

बहुत कदाचार। अपनी दिशा कहू हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी दिशा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई दी से मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा। जित दिन उनका स्वाय हो ना आवे, तित दिन नेड़े को ना चुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुम उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जा, तो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अनदिन नाम जपो हर संतो, इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर, शांत शीतल मन अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अनदिन त्याए नाम हर जपना, जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछान राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बड़ बड़ना। इस जन की वडे आई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। इक तिल तिल तिल ना, जिसते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे, नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरु बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए ज्यो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैश चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ी है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूर है हर एक दिखाई है।

सो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब कुछ सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौण महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन सा

परलो करता, व्यापत करता, अलिप्तो करता, वक्तो करता, बूजत करता, आवत करता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की म्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़ अवायले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जायले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुम्बायले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले, जैसे मीन रसन साध दिन से

कहु नानक सुख सहज निवास गौण महला पुण्यवा। निमानी को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान। गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय। रहाओ रंक राओ जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण। बियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे। जा का अंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए। आप अकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार। नाम रंग पग पुपहे लाल जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन। जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास। से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत। रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे। जाके उपदेश परम पवन से। जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार। कोट पतित जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहा, फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगती लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई, गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगाश, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुर मुक्त ना पाये पाई, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा

पुरख भगवान, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सो